ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। तुषी पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे

0: मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मातृभूमि को अर्पित इस श्रद्धा सुमन के साथ आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम वंदना।

जय जय भारत जननी जय हो। हिमगिरी तेरा शीश सवारे, चंदा सूरज दीप उजारे, गंगा जमुना मंगल गाती, निर्मलता का पाठ पढ़ाती, कल कल करती जल की ध्वनि में सप्त स्वरों की मधुरिम लय हो। जय जय भारत जननी।

सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता हमेशा नहीं रहते। संसार में ऐसा कोई भाग्य का धनी नहीं जो सदा सुखी हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं जिसे हमेशा दुखी दुख हो। ये तो सांसारिक परिस्थितियां हैं जो आने जाने वाली होती हैं। इनसे व्यथित न होकर सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर का स्मरण मात्र ही विषम परिस्थितियों से उबार लेगा।

कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलें, मन को विषयों के विष से हटाते चलें, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलें। काम करते रहें, नाम लेते रहें, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलें। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलें। मन के रथ को सुमारक लगाते चलें, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलें।

हे आदिशक्ति जगदम्बा, अपनी करुणा की अमृत वर्षा हम सब पर सदा बनाए रखना। हमारे मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता और जीवन में सदैव सद्बुद्धि का प्रकाश भर देना। जो भी तेरे दर पर आए उसकी झोली को अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर देना।

0: इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने सोनू निगम, वाणी जयराम, नरेंद्र चंचल, मुकेश और साथियों की गाई भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 6:25 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम प्रकाश किरण का। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं मुकुंद माला से पाठ।
1: श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासे त्यालापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद।
2: हे मुकुंद, कुछ ऐसा कर कि जिससे मैं प्रतिदिन हे श्री वल्लभ, हे वरद, हे दयानिधान, हे भक्त प्रिय, हे जन्म मरण का नाश करने में कुशल, हे नाथ, हे नाग शयन, हे जगन निवास आदि आदि रटता ही रहूं।
1: मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंत में कांत मियंत मर्थम अविस्मृति स्वच्चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात।
2: हे मुकुंद, सिर झुकाकर नमस्कार करके केवल इतनी ही एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरी कृपा से मैं अपने किसी भी जन्म में तेरे चरण कमलों को न भूलूं।
1: कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
2: हे कृष्ण, मेरा चित्त रूपी मानस हंस आज ही तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि प्राण निकलते वक्त जब कफ वात और पित्त से कंठ रुंध जाएगा तब तेरा स्मरण कैसे हो सकेगा।
1: भव जलधिगतानां द्वंद्ववाताहतानां सुत दुहित्रिकलत्र त्राण भारावृतानां

0: भव सागर में पड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी वायु के थपेड़े खाने वाले पुत्र पुत्री पत्नी आदि की रक्षा के भार से दबे हुए नाव के अभाव में विषम विषयों के पानी में गोते खाने वाले मनुष्यों के लिए विष्णु रूपी नाव ही एक शरण है।
1: भव जलधिम मगाधम दुस्तरम निस्तरेयम् कथमहमिति चेतो मास्मगाह कातरत्वम् सरसि जदृशि देवे तावकी भक्तिरेका नरक भिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् भव जलधिमगाधम् दुस्तरम् निस्तरेयम्।

0: सरसि जदिषि देवे तावकी भक्ति रेका नरक भिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्।
1: हे चित्त, तू ये डर मत रख कि इस अगाध और दुस्तर भवसागर को मैं किस तरह पार कर सकूंगा। यदि कमल से नेत्रों वाले और नरकासुर का नाश करने वाले देव में तेरी अनन्य भक्ति होगी तो वो तुझे जरूर पार लगाएगी।
2: आप सुन रहे थे मुकुंदमाला से पाठ, कार्यक्रम था प्रकाश किरण। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, जिसमें अब हम आपको जानकारी देंगे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में कुंदन सिंह आपको जानकारी देंगे पौधों से चारे की व्यवस्था विषय पर।

स्वास्थ्य चर्चा सुनी जा सकेगी सुबह 7:10 पर। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मधु राजपाल चर्चा करेंगी स्तन की गांठ एवं उपचार विषय पर। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 7:30। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे 8:45 पर। और इसके अलावा सुबह 10:00 कार्यक्रम होगा सुरसरिता। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:25 पर। कार्यक्रम होगा गीत मंजूषा। लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा सुनिएगा सुबह 9:15 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे सुनेगा ख्याल गायन, कलाकार होंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी, आप प्रस्तुत करेंगे राग रामकली। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। प्रधानमंत्री जी के मन की बात पर आधारित ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा सुबह 11 बजे। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोपाल सिंह परमार के गाए कुछ ब्रज लोकगीत। नई फिल्मों से फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा दिन में 12:30 बजे। कार्यक्रम होगा नए तराने। हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंडल सुन सकेंगे 1:15 पर। इस कार्यक्रम में आज बच्चे सुनेंगे चर्चा गीतों के जादूगर गोपाल दास नीरज। साथ ही रोचक जानकारी दी जाएगी अद्भुत साहस की मिसाल विषय पर, जो कि है मंगल पांडे की। बाल मेहमान क्रम में आज सुनेंगे बच्चे बाल गीत हम सपूत देश का नाम बढ़ाएंगे, साथ ही कहानी चालाक बंदर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज 1:45 पर सुनिएगा नीता एडवर्ड तोरने की गाई चंद गजलें।

मेरा गुल्ला कहाँ है, ये शीर्षक है नाटक का जिसे आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। आलेख पद्मा सचदेव का है और निर्देशक हैं सुदर्शन कुमार। लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 3:00। शाम 5:10 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:30 चर्चा की जाएगी स्टमक फ्लू के विषय में। साथ ही बच्चे सुनेंगे खेल दुनिया फीफा 26 एक अवलोकन और वार्ता पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भागीदारी।

ग्रामीण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 6 बजे का और 6:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम मजदूर मंडल। शाम 7:10 पर विविध क्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे वार्ता। आधुनिक हिंदी काव्य में पावस वर्णन वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुनीता सक्सेना। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 7:30 बजे।

संसद के समक्ष मुद्दे, ये कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 बजे और रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति होंगे। तो ये थी कार्यक्रमों संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है श्री रामचरित मानस कांड का। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में आज कुंदन सिंह आपको जानकारी दे रहे हैं पौधों से चारे की व्यवस्था विषय पर।
1: हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है तथा इसकी 80% से अधिक आबादी गाँव में निवास करती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि कार्यों हेतु पशुओं की आवश्यकता होती है तथा दूध और दही और मक्खन के उत्पादन हेतु गाय और भैंसों की। साथ ही कृषि उत्पादन को सतत बनाए रखने के लिए खेतों को उत्तम खाद हेतु आवश्यक गोबर भी पशुओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पशुओं को वर्तमान में भी गाँव के दुर्गम रास्तों पर यातायात हेतु प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में गाय भैंस बकरियां एवं अन्य पशुपालन एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। यहां तक कि शहरों में बड़े उद्योग जैसे दुग्ध एवं ऊन उद्योग आदि पूर्णतया गाय भैंस और भेड़ों पर निर्भर हैं। इस प्रकार पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पशुओं की महत्ता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर पाने के लिए उनका अच्छा खान पान एवं स्वस्थ रहना अत्यधिक आवश्यक है। पर्याप्त चारा उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण पशुधन जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं भरपेट भोजन न पाने के कारण दिन प्रतिदिन मरियल होते जा रहे हैं और उनकी नस्ल बिगड़ रही है तथा दुग्ध उत्पादन एवं अन्य कार्य क्षमता घटती जा रही है। देश की बढ़ती आबादी एवं आवासीय समस्याओं के कारण कृषि भूमि का विस्तार संभव नहीं है और प्रदेश के पारंपरिक वानिकी के अंतर्गत पड़ने वाले सीमित क्षेत्रों में सघन वनीकरण करने से भी बढ़ते हुए पशुधन के चारे की मांग को अंततः भी पूरा करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जितनी भी भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी खाली बंजर भूमि चाहे वह सरकारी अर्ध सरकारी संस्थागत या निजी हो उस पर चारे वाले वृक्ष लगाए जाएं, ताकि प्रदेश के ग्रामीण पशुधन के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सके। चारे की पर्याप्त आपूर्ति के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ साथ पशुओं के नस्ल और उनकी अन्य कार्य क्षमताओं में भी आशातीत सुधार होगा। पेड़ पौधों से चारे की व्यवस्था के संबंध में सर्वेक्षण करने से ज्ञात होता है कि पशुधन के चारे की व्यवस्था हेतु वृक्ष प्रजातियों पर निर्भरता स्थानों से ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो चारे की कमी कुछ हद तक कृषि उत्पादों के अवशिष्टों से पूरी हो जाती है, परंतु हम ज्यों-ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों कृषि उत्पादों की कमी होती जाती है और चारे के लिए वनों पर निर्भरता बढ़ती जाती है। किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली पशुओं की प्रजाति उस स्थान से इर्द गिर्द पाए जाने वाली वनस्पति अथवा चारे पर निर्भर करती है तथा चारा प्रजाति के पेड़ पौधों की उपलब्धता उस स्थान के जलवायु एवं भूमि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। चारा पत्ती वाले पेड़ पौधों की उपलब्धता के अनुसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 7 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालयन क्षेत्र, उप हिमालयन क्षेत्र,

0: तराई भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगे समतल क्षेत्र पश्चिमी, गंगे समतल क्षेत्र पूर्वी और विंध्य क्षेत्र। हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरांचल के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी तथा अल्मोड़ा के 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। तापमान तथा ऊंचाई की विविधता के साथ साथ इस क्षेत्र में पाए जाने वाले चारा प्रजातियों के पेड़ पौधों में भिन्नता पाई जाती है। उप हिमालयन क्षेत्र में 450 मीटर से 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़ के कुछ निचले भाग आते हैं, जहां बकैन, भीमल, खड़िक, सहजना, सहतूत आदि प्रमुख चारा प्रजातियों के पेड़ पौधे इस क्षेत्र में आसानी से उगाए जाते हैं। तराई भावर क्षेत्र जो 100 मीटर से 400 मीटर की ऊंचाई वाले देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और नैनीताल के क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ती है, वर्षा का पानी यहाँ की भूमि में जल्दी ही सोख लिया जाता है। इन स्थानों की मुख्य प्रजातियाँ अर्जुन, बकैन, कटहल, लसोड़ा, सुबबूल और सहतूत हैं। तराई क्षेत्र के अंतर्गत बहराइच, बस्ती, देवरिया, गौड़ा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी जिले के कुछ भाग इस क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में बबूल, बकैन, बेर, कचनार, सुबबूल, सैंजना, नीम, बैंसी आदि प्रमुख चारा प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। गंगे समतल क्षेत्र पश्चिमी, जिसमें जनपद आगरा भी आता है, ये क्षेत्र लखीमपुर, फर्रुखाबाद और इटावा से पश्चिम की ओर के सभी जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चारा प्रजातियों के पेड़ पौधे बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, सिरस और सुबबूल हैं। गंगेय समतल क्षेत्र पूर्वी, इन क्षेत्रों में सीतापुर, हरदोई, उन्नाव तथा इससे पूर्व की ओर के जनपद के क्षेत्र आते हैं और इस क्षेत्र में बेर, कचनार, काला सिरस, सफ़ेद सिरस, नीम, लसोड़ा, सुबबूल आदि पेड़ पौधों की चारा प्रजातियां पाई जाती हैं। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद, बांदा, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी तथा कानपुर, ललितपुर और मिर्जापुर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में बबूल, बेल, कचनार, कालासिरस, सहजन, अंजन प्रजातियां चारा पत्ती के रूप में मवेशियों को खिलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण और बहु उपयोगिता वाले ग्रामीण पशुधन के लिए आवश्यक चारे की कमी को पूर्ण रूपेण समाप्त करने के लिए इन चारा प्रजातियों का अधिकाधिक संख्या में सघन वृक्षारोपण किया जाना नितांत आवश्यक है। ऐसे वृक्षारोपणों के द्वारा हम कार्य एक लाभ अनेक की कहावत को चरितार्थ करते हुए बहुआयामी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वृक्षारोपणों से पशुधन को पर्याप्त चारा और इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ भूचरण भी रुकेगा। भीषण गर्मी में सड़कों के किनारे चारा प्रजातियों के ऐसे वृक्षों के झुंड पशु और मनुष्य दोनों को छाया और आराम पहुंचाएंगे। पर्यावरण निरंतर स्वच्छ होता रहेगा, वातावरणीय स्थिरता उत्पन्न होगी, जिससे निरंतर अन्न उत्पन्न होने की संभावना बढ़ेगी और गांवों में खुशहाली आएगी। गांव की खुशहाली प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली देश की खुशहाली।
1: पौधों से चारे की व्यवस्था, इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रहे थे कुंदन सिंह। कार्यक्रम था खेती की बातें, प्रसारण आकाशवाणी से किया जा रहा था मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है और वो भाषा है हिंदी।

0: यात्रिणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार

0: मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में हमारी आज की वार्ताकार हैं डॉक्टर मधु राजपाल। आप चर्चा कर रही हैं स्तन की गांठ एवं उपचार विषय पर। आइए सुनते हैं।
1: स्तन की गांठ किसी भी महिला के लिए चिंता का विषय बन सकती है। आज हमारे देश में स्तन का कैंसर दूसरे नंबर पे

0: का कैंसर दूसरे नंबर पे कॉमन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर में जल्दी पता लगा लेने और इलाज ले लेने में ही मरीज की भलाई होती है, लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। स्तन की गांठ दो प्रकार की होती है, एक तो बेनाइन यानी कि जो कैंसर नहीं है, और दूसरी कैंसर। बेनाइन गांठों में सबसे कॉमन टाइप की होती है फाइब्रोएडिनोमा। यह छोटी गांठ होती है जो कि स्तन में किसी भी उम्र पे, खासतौर से छोटी उम्र की लड़कियों को ज़्यादा होती है। इसमें गांठ मोबाइल होती है यानी कि अंदर से या खाल से जुड़ी हुई नहीं होती है और मरीज को कोई दर्द नहीं महसूस होती है। हालांकि यह खतरनाक गांठ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी गांठ महसूस होने पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और अगर डॉक्टर राय देता है कि इसको निकलवा देना चाहिए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में इसमें भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। दूसरी एक बेनाइन कंडीशन होती है, स्त्रियों में 35 से 40 साल की उम्र के आसपास स्तनों में दर्द होता है। यह दर्द ज़्यादातर 15वें दिन के बाद से शुरू होता है और महीना होने के बाद में ठीक हो जाता है, और छोटी छोटी गांठें अंदर महसूस होती हैं। यह भी कोई खतरनाक स्थिति नहीं है, यह एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि सादी दवाई देने से ठीक हो जाती है। अगर परेशानी ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई लेकर के अपने को ठीक कर लेना होता है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, वह है स्तन का कैंसर। यह गांठें खराब टाइप की होती हैं और इनके साथ खास बात यह है कि इनमें दर्द नहीं होता है, इसलिए मरीज डॉक्टर के पास जाने में देरी करता है। तो स्त्रियों, कोई भी गांठ अगर स्तन में महसूस हो रही है तो घर पर बैठे नहीं रहना है और डॉक्टर को जाकर के रिपोर्ट करना है। इसके लिए एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को सिखाती हूँ, सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को चेक करना। हर महीने से निपटने के बाद एक बार अपने आप को आप चेक करना सीखिए। चेक करने में अपने हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर दोनों स्तनों को पूरा अच्छे से महसूस करना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं दिख रही है, कहीं कोई गांठ जो खाल से चिपकी हो या अंदर चिपकी हो या कोई भी गांठ महसूस हो रही हो, चाहे उसमें दर्द ना हो पर आपको डॉक्टर के पास जाना है। और इस प्रकार की गांठ खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी छोटे छोटे अंदर की तरफ को दर्द भरे हुए लिम्फ नोड्स महसूस होते हैं तब भी जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में, और अगर डॉक्टर देख करके कुछ चेकिंग करके बताता है कि यह कैंसर है तो उसका उचित उपचार लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया हुआ उपचार आपकी जान बचा सकता है। जांचों में डॉक्टर ज़्यादातर वहाँ से छोटा सा टुकड़ा लेकर के या पानी लेकर के जाँच के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि यह कैंसर तो नहीं है। दूसरा, वहाँ का खास एक्सरे होता है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, वो कराकर देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देख लेते हैं, और अगर इन सब जांचों में आता है कि कैंसर है तो डॉक्टर राय देते हैं कि वह स्तन निकाल देना चाहिए। और अगर वो ऐसी राय देते हैं तो आप करवा लीजिए। और कभी कभी जब स्टेज ज़्यादा होती है तो इसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी सलाह दी जाती है। तो बहनों, आपने देखा कि स्तन की गांठ अगर हम ठीक समय पर इसका उपचार करा लें तो जानलेवा नहीं है और हम खुद जांच करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम शर्माएं और हम डॉक्टर के पास ना जाएं। अगर हम ठीक समय पर पहुंच जाते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं।
1: स्तन की गांठ एवं उपचार, इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रही थी डॉक्टर मधु राजपाल। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा, और आइए अब सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

संवित स्वर में देश का नभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी आगरा से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुए से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जिले में किया 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित तिन्नू यादव और

0: अखिलेश यादव को 39 घंटे के रिमांड पर लेकर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ममूटी तथा कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया जाएगा पुरस्कार। और प्रदेश में बढ़ी मॉनसून की सक्रियता, मौसम विभाग ने दी अगले 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी थी। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, संकल्प हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा।
0: मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर में रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वहीं अमरोहा में 207 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
2: ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संभल में भी 569 करोड़ रुपए लागत से 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विकास और विरासत का संरक्षण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल गोरखपुर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और उसके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना। श्री पाठक ने अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।
3: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उमस भरा माहौल था। हमने तत्काल उसमें वातानुकूलित संयंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फोटोग्राफ सीएमएस और सीएमओ हमें भेजेंगे। तत्काल मरीजों को उच्चीकृत करके सेवाएं दी जाएं, कहीं कोई कमी न रखी जाए, मरीजों की सेवा में परिजनों को कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
0: केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल लखनऊ में विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत थीम पर आधारित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस शिविर में 190 से अधिक जिला युवा अधिकारियों और माई भारत एनएसएस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और भारत सरकार युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत की भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत

0: पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे कर 5 मिनट पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन कल से 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस ने कल 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। पुलिस और जांच एजेंसी ने आरोपियों से पूछताछ की। वहीं चढ़ावा मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल कानपुर में कहा कि यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
1: दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी देवी का और वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। यह दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुई और जनकल्याण की कामना की। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुग्म के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटे से रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ाव की ओर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जिले में किया 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित टुन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे के रिमांड पर लेकर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ममूटी तथा कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया जाएगा पुरस्कार। और प्रदेश में बढ़ी मानसून की सक्रियता। मौसम विभाग ने दी अगले 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो।

जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। सुबह के 7:31 और 51 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम आसपास सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, हाजिर हैं हम आज का कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे मंगल पांडे की जयंती पर। रोजाना की तरह अपने आसपास की खबरें आपको देंगे और इसके अलावा एक और चर्चा करेंगे बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर। साथ ही गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं देंगे और सुनवाएंगे आपको मनोरंजन के लिए कुछ गीत। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक चर्चा से। अपने आसपास की खबरें हम आपको देंगे इस चर्चा के बाद, और ये चर्चा है मंगल पांडे जयंती पर। आज इस चर्चा के माध्यम से हम उस वीर सपूत को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनके साहस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी प्रज्वलित की। हम बात कर रहे हैं अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे की, जिनकी जयंती पर पूरा देश, हम सभी उन्हें कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं। साथियों, मंगल पांडे का जन्म आज ही के दिन यानी 19 जुलाई को 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। उस समय अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। इसके अलावा नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की चर्चा ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया था। 1857 को 29 मार्च की बात हम आपको बताते हैं, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उन्होंने अंग्रेजी शासन का निर्भीकता से सामना किया और अपने साथियों से भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका साहस पूरे देश में प्रेरणा बन गया। अंततः 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कुछ ही समय बाद यानी 1857 में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा और नई ऊर्जा दी। साथियों, मंगल पांडे का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा से प्रकट होता है। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मातृभूमि के सम्मान को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि इतिहास उन्हें भारत के प्रथम महान क्रांतिकारियों में गिनता है। आज जब हम भारत में खुली हवा में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, तब हमें उन वीरों के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके बलिदान से हमें ये स्वतंत्रता मिली। मंगल पांडे की जयंती केवल उन्हें याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि ये संकल्प लेने का भी दिन है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अमर शहीद मंगल पांडे को शत शत नमन करें और उनके साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लेने का संकल्प करें।

कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। तो साथियों अब चलते हैं अपने आसपास की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। यह है पहली खबर जो आपको थोड़ा सा निराश करेगी। जी हाँ, सीएनजी के दाम 100 रुपए के पार हुए, 65,000 वाहनों पर इसका असर पड़ेगा। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के दाम में फिर से वृद्धि कर दी गई है और इसका सीधा असर जनपद में सक्रिय 65,000 वाहनों पर पड़ने जा रहा है। इन सभी को अब गैस का दाम 102 रुपये प्रति किलो चुकाना होगा। अभी तक सीएनजी खरीदारों को 99.50 रुपये किलो के हिसाब से सीएनजी मिल रही थी। 3 महीने की अवधि में ये इतनी ही वृद्धि है। नए दाम शनिवार सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। वृद्धि की जानकारी गैस भरवाने के समय हुई और ये आगरा में सीएनजी के दाम का अधिकतम रेट है। पहली बार सीएनजी ने सेंचुरी लगा दी है। ऐसे हालात में सीएनजी के रेट में वृद्धि वाहन संचालकों के साथ ज्यादती लग रही है और उनकी मजबूरी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय आपूर्तिकर्ता बार बार रेटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उद्यमी कहते हैं पहले ही आगरा में सीएनजी के दाम देश के कई अन्य हिस्सों से अधिक चल रहे हैं। यहाँ के बाशिंदों के लिए ताज संरक्षित क्षेत्र की बाध्यता के कारण हरित ईंधन का उपयोग अनिवार्य है। जहाँ व्यवस्था के द्वारा किसी लक्ष्य को हासिल करना हो, इसके लिए जनभावना को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सीएनजी के दाम कम ही रहे जाने चाहिए ताकि उपभोगकर्ताओं को विमुख करने की बजाय प्रोत्साहित किया जा सके। अगली खबर मौसम के रुख की। कल से 3 दिन हवाओं संग बारिश होगी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। ताजनगरी में गर्मी और उमस से जल्दी ही राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सोमवार से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम का ये मिजाज 3 दिन तक बना रह सकता है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो महीने के आखिर तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ज़िले में आखिरी अच्छी बारिश 4 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 10 जुलाई को हल्की बूंदाबांदी हुई और मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। तब से आसमान अधिकतर साफ है। गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। अब मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और सोमवार से भारी बारिश के आसार हैं। आगरा से अछनेरा के बीच जल्दी शुरू होगी रोडवेज बस सेवा। परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर 17 जुलाई को जारी पत्र के अनुसार ईदगाह बस स्टैंड से अछनेरा तक रोडवेज बस सेवा संचालन करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित रूट एमजी रोड बोदला बिचपुरी सहाई रायभा होते हुए अछनेरा बस स्टेशन तक रहेगा। परिवहन निगम ने पत्र में बताया

कि वर्तमान में एमजी रोड पर निगम की बसों के संचालन पर प्रतिबंध है। क्षेत्र की जनता लंबे समय से आगरा असनेरा के बीच सीधी रोडवेज बस सेवा की मांग कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन से समन्वय कर जल्दी अनुमति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। भाइयों को राखी के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। बहनें अब अपने भाइयों को बिना किसी चिंता के शहर में या शहर से बाहर राखियां भेज सकेंगी। डाक विभाग ने वाटरप्रूफ व प्लास्टिक राखी लिफाफे लॉन्च किए हैं। वर्षा में भीगने या फटने के डर के बिना इन लिफाफों से राखी बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत भाई तक पहुंचेंगी। डाक विभाग का कहना है कि राखी वाले लिफाफों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, ताकि बहनों के प्यार और स्नेह राखी को अपने हाथों पर सजाने के लिए भाइयों को प्रतीक्षा न करनी पड़े। हेड पोस्टमास्टर का कहना है कि ये लिफाफे 75 माइक्रोन की खास मोटी शीट से बने होते हैं, जिससे ये आसानी से फटते नहीं हैं, न ही पानी से कोई नुकसान होगा। लिफाफे में एक बार चिपकने वाली खास पट्टी लगी होती है, जो इसे मजबूती से बंद कर देती है, जिससे राखी बाहर नहीं गिरेगी। बारह यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता भी सस्ती बिजली के दायरे से बाहर होंगे। जो टैरिफ आदेश के अनुसार सस्ती बिजली के हकदार हैं, अब बिजली कंपनियों द्वारा लाइफलाइन श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे टैरिफ आदेश का उल्लंघन मानते हुए विद्युत नियामक आयोग से इन उपभोक्ताओं को पुनः लाइफलाइन श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। डॉक्टरों को अवसाद मुक्त करेगी टेली मानस सेवा। एमबीबीएस डॉक्टरों के अवसाद की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने टेली मानस परामर्श सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत मानसिक रोग विशेषज्ञ अवसाद पीड़ित डॉक्टरों को परामर्श देंगे और आवश्यकता पड़ने पर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट पीजी के माध्यम से एमबीएमएस की 58,000 सीटें भरी जाती हैं, जिसमें हर वर्ष 2 से 2.5 लाख डॉक्टर हिस्सा लेते हैं। रेलवे में अब डिप्लोमा वाले नहीं बन सकेंगे फार्मासिस्ट। भारतीय रेलवे के अस्पतालों में फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। रेलवे बोर्ड ने फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा धारक इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे। न्यूनतम योग्यता बढ़ाते हुए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत पंजीकरण भी आवश्यक है। ये नया नियम 10 जुलाई से लागू हो गया है। एडेड महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई शिक्षक भर्तियों की तैयारी को तेज कर दिया है। एडेड माध्यमिक के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पद के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी विषयवार लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग को उच्च शिक्षा विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 तथा प्राचार्य के 111 रिक्त पदों का विवरण मिल चुका है। आयोग ने वर्ष 2026 से आगामी परीक्षाओं के लिए विषयवार पाठ्यक्रम में प्रश्नों की संरचना स्पष्ट की है।

तो ये थे आज की खास खबरें। और साथियों, अब एक चर्चा करते हैं आपसे। जैसा कि हमने आपको बताया था, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस आज हम मना रहे हैं, तो एक छोटी सी चर्चा, एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे इस विषय पर। साथियों, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस आज यानी 19 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव का स्मरण कराता है। वर्ष 1969 में यानी 1969 में आज ही के दिन देश के चौथे प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस निर्णय का उद्देश्य केवल बैंकों का स्वामित्व बदलना नहीं था, बल्कि बैंकिंग सेवाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था। उस समय देश की बड़ी आबादी विशेष

खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। किसानों, छोटे व्यापारियों और सीमित आय वाले परिवारों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान नहीं था। राष्ट्रीयकरण के बाद इस दिशा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। बैंकों की शाखाएं गांव-गांव तक पहुंची और लाखों लोगों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला। इसके परिणामस्वरूप खेती, लघु उद्योग, शिक्षा और स्वरोजगार जैसे अनेक क्षेत्रों को नई गति मिली। लोगों में बचत की आदत बढ़ी और बैंक देश के आर्थिक विकास के एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे। यही वो दौर था जब बैंक केवल लेन देन की जगह नहीं रहे बल्कि आम नागरिकों के विकास के सहभागी बन गए। आज समय बदल चुका है। बैंकिंग भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ी है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी सुविधाओं ने लेन देन को तेज, सरल और सुविधाजनक बना दिया है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। ये वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि डिजिटल सुविधा के साथ सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। अपने बैंक खाते की जानकारी, ATM पिन, पासवर्ड या OTP किसी के साथ साझा न करें। जागरूकता ही सुरक्षित बैंकिंग की सबसे बड़ी पहचान है। साथियों, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस हमें ये संदेश देता है कि आर्थिक प्रगति तभी सार्थक होती है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। एक सशक्त बैंकिंग व्यवस्था केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि लोगों के जीवन को भी नई दिशा देती है। तो आइए इस अवसर पर हम नियमित बचत करने, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अपनाने और आर्थिक रूप से सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लें।

कार्यक्रम आसपास में आइए अब आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। यह है पहली सूचना जो हमें प्राप्त हुई है थाना प्रभारी थाना ढोलना जनपद कासगंज से। यह सूचना है श्रीमती नीलम के विषय में। श्रीमती नीलम पत्नी श्री रवि निवासी थाना ग्राम नगला केहर थाना ढोलना जनपद कासगंज दिनांक 25 मई 2026 से लापता हैं। नीलम की उम्र करीब 28 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 3 इंच रंग गोरा है। घटना के दिन इन्होंने हरे रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने हुए हैं। इनके साथ एक मोबाइल फोन भी है जो कि स्विच ऑफ आ रहा है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना ढोलना जनपद कासगंज को सूचित करें।

थाना सहावर जनपद कासगंज से प्राप्त यह अगली सूचना है, ये सूचना है पिंकी के विषय में। पिंकी पत्नी श्री कृष्ण निवासी गांव केहर, क्षमा कीजिए, ग्राम अशोकपुर अमापुर कासगंज, दिनांक 16 मई 2026 से लापता हैं। पिंकी की उम्र लगभग 30 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 2 इंच और रंग गोरा है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना सहावर जनपद कासगंज को सूचित करें। तो ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। इसके साथ ही आज का आसपास कार्यक्रम समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार

0: मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की

0: गुजरात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78 प्रतिशत हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight.

0: में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोशो जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजर हैं। शहर की सड़कों पर फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने हुए हैं। मगरबी बंगाल की हुकूमत मुख्तलिफ अहम मकामात और रियासत के सभी जिलों में फुटबॉल मैच दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन्स का एहतमाम कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। मोहल्ले नीले और सफेद रंग से सजे हुए हैं और मैसी की जर्सी हर जगह नजर आ रही है। मगरबी बंगाल के महकमा खेल ने कोलकाता के नंदन और एक तारा में ओपन एयर स्टेज का इंतजाम किया है ताकि फुटबॉल का फाइनल मैच लोग अवामी स्क्रीनिंग पर देख सकें। क्लब्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेसेस में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई हैं। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान दिल्ली की वजीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर के रेस्तरां, कैफे और दीगर अहल मराकज कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि इस फैसले से फुटबॉल के शायकीन को यकजा होने और खेल से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। नीज शहर की रंगारंग नाइट लाइफ और मकामी कारोबार को फरोग हासिल होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ख्वातीन कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी टूर्नामेंट में ख्वातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
2: शुक्रिया आसिया। राजधानी से शाया होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने खलाई शोबे में भारत की कामयाबी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से खला में रवाना, वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद दी। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत दहशतगर्दी को हर महाज पर जवाब देने की ताकत रखता है। रोजनामा प्रताप की अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना ताउन दे सकें और जरिया मौश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या AI से तैयार की गई OMR शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। CBSE ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

वेव 161.5 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। साथियों, गीतांजलि कार्यक्रम में आज हम स्मरण करेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी फिल्म संगीत की उस विलक्षण प्रतिभा का जिनकी रचनाओं ने शब्दों को संवेदना और संगीत को आत्मा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण गोपाल दास नीरज की, जिनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। साथियों, 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के पुरावली गांव में नीरज जी का जन्म हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। शिक्षा पूरी

करने के बाद उन्होंने अध्यापन को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। अलीगढ़ उनका कर्मस्थल बना, लेकिन आगरा से भी उनका गहरा आत्मीय रिश्ता रहा। आगरा की साहित्यिक और सांस्कृतिक भूमिका ने उन्हें हमेशा अपना माना। कवि सम्मेलनों से लेकर फिल्मों तक उन्होंने अपनी लेखनी से हर मंच को गरिमा दी। उनकी कविताओं में जीवन का दर्शन है, प्रेम है, करुणा है और मनुष्य के प्रति गहरा विश्वास भी। और शायद यही कारण है कि आज भी उनकी रचनाएं उतनी ही ताज़ा और प्रासंगिक लगती हैं जितनी अपने समय में थी। आइए सुनते हैं गोपाल दास नीरज की कलम से लिखा ये गीत।

साहित्य और सिनेमा के बीच एक सुंदर सेतु बनाया। उनकी भाषा में साहित्य की गरिमा भी थी और जन जन तक पहुंचने की सहजता भी। उन्होंने हिंदी फिल्मों को अनेक कालजयी गीत दिए। उनके शब्द केवल धुन का हिस्सा नहीं बनते थे बल्कि सीधे श्रोताओं के हृदय में उतर जाते थे। जैसे कि कुछ गीत हैं, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, फूलों के रंग से दिल की कलम से, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, ए भाई जरा देख के चलो और रंगीला रे। ये सब ऐसे लोकप्रिय गीत हैं जो आज भी उतने ही प्रिय हैं जो अपने समय में थे। साथियों, नीरज की लेखनी में प्रेम था, लेकिन वो केवल दो दिलों का प्रेम नहीं था, उसमें जीवन, प्रकृति और मानवता के प्रति गहरा अनुराग भी दिखाई देता है। और यही विशेषता उन्हें अपने समकालीन गीतकारों से अलग पहचान देती है। ऐसी ही वानगी लिए ये गीत आइए सुनते हैं।

साथियों, गोपाल दास नीरज जितने बड़े कवि थे उतने ही सरल और विनम्र इंसान भी थे। मंच पर उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता था, लेकिन सफलता ने कभी उनके स्वभाव की सहजता को नहीं बदला। वे मानते थे कि कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मनुष्य को बेहतर इंसान बनाना भी है। उनकी रचनाओं में आशा, प्रेम, मानवीय संवेदनाएं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बार बार दिखाई देता है। उनकी कविताएं हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में संघर्ष आए तब भी मुस्कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन दर्शन उनकी रचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखे हुए है। आइए सुनते हैं एक गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। इस कार्यक्रम में आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं महान गीतकार और कवि गोपाल दास नीरज को। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं नीरज जी की। नीरज जी को साहित्य और कला के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने भी अपने सर्वोच्च सम्मानों से अलंकृत किया। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी रचनाकार का, साहित्यकार का सबसे बड़ा सम्मान उसके पाठक या उसके श्रोताओं का प्रेम होता है, और ये सम्मान नीरज जी को जीवन भर मिला। और आज भी उनकी कविताएं और उनके गीत नई पीढ़ी को उतने ही आकर्षित करते हैं। उनकी रचनाएं समय की सीमाओं से परे हैं। वे हमें जीवन से प्रेम करना, रिश्तों को संजोना और कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखना सिखाती हैं। सुनते हैं एक और गीत।

साथियों, गोपाल दास नीरज भले ही आज हमारे बीच में सशरीर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनकी रचनाएं आज भी हमारे साथ हैं। जब जब उनके गीत गूंजते हैं, ऐसा लगता है मानो स्वयं नीरज जी अपने सहज, मधुर और आत्मीय स्वर में हमसे संवाद कर रहे हों। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वो समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण होता जाता है, और यही किसी महान रचनाकार की सबसे बड़ी पहचान है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके ही शब्दों की भावना के साथ यही कामना करते हैं कि प्रेम, संवेदना और मानवता का ये उजाला हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहे। आइए सुनते हैं एक बहुत ही मार्मिक गीत।

0: साथियों, नीरज जी शब्दों के माध्यम से आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी अमूल्य साहित्यिक विरासत को सादर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और संवेदना का स्रोत बनी रहें, इसी कामना के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार हैं तनवीर फातिमा।
2: भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ये एक आधुनिक, व्यापक और ऐतिहासिक व्यापार समझौता है जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य बेहतर बाजार पहुंच, व्यापार उदारीकरण और शुल्क में रियायतों के माध्यम से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एकीकरण को और अधिक मजबूत करना है। इस समझौते से भारत के उद्योग और व्यापार जगत का क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी मैम, धन्यवाद।
2: आलोक जी, भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कितना महत्वपूर्ण कदम है?
3: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, अगर भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशंस की तरफ बढ़ना है तो मुक्त व्यापार समझौता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता की, जो जुलाई 2025 को एक समझौता किया गया था और 15 जुलाई 2026 को ये ऑपरेशनल लाया गया, ये मुक्त व्यापार समझौता कई मायनों में बहुत महत्व

0: महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर हम बात करें यूके की, तो भारत का जो यूके के साथ व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत ने 2025-26 में 39 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जिसमें यूके स्टेबल मार्केट के तौर पर भारत के लिए एक अच्छा बायलेटरल पार्टनर है, जहां पर लगातार द्विपक्षीय व्यापार को हम प्रमोट कर रहे हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते होने के बाद से ही जो तमाम ऐसे बायर्स जो यूके में बैठे हुए थे, उन्होंने भारत के उत्पादों पर रुझान किया है। और मुक्त व्यापार समझौता अगर हम बात करें, तो इसमें जो लेदर जा रहा है भारत से, उस पर 16% का शुल्क लगाया जाता था यूके के कस्टम्स या यूके की सरकार के द्वारा। इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद से वो जीरो हो गया है। अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें, रेडीमेड गार्मेंट्स की बात करें, अपैरल्स की बात करें, उस पर 12% का टैक्स लगाया जाता था, टैरिफ, वो जीरो हो गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 4% का था, वो जीरो हो गया है। केमिकल्स में 8% का था, वो टैरिफ जीरो हो गया है। तो मुक्त व्यापार समझौता से ऐसे वो तमाम सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हों या लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हों, जो रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये सारे सेक्टर्स को इस मुक्त व्यापार समझौता के माध्यम से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर यूके की हम बात करें, तो भारत का जो निर्यात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद, यूनाइटेड किंगडम हमारा एक अच्छा पार्टनर है, जहां पर लगातार निर्यात बढ़ रहा है।
1: जी आलोक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम जितने भी क्षेत्र हैं जिनसे हमको मजबूती मिलेगी, चाहे वो निर्यात की बात हो या हम सर्विसेज की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है देश का, और जिस तरह के यहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें या हम जैसे आपने लेदर की बात करी, केमिकल्स की बात करी, जिन चीजों पे फोकस है यूपी में, जिनका बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, यूपी के परिप्रेक्ष्य में कितना फायदेमंद है ये समझौता?
0: देखिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसका रास्ता हमारे उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो निर्यात के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी जो लेटेस्ट डेटा हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स का एनालाइज किया उत्तर प्रदेश का, उसमें हमने ये पाया है कि 201,241 करोड़ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ, जो पूरे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है और दुनिया के तमाम देशों का एक्सपोर्ट है। जब हम यूके की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के निर्यात को, तो हम ये देखते हैं कि जो यूके है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा बाजार है, जहां पर लगभग 40 से 42 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट लगभग यूरोप को हुआ, यूके को हुआ। तो जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स है, जो लेदर सेक्टर्स है, इसके अलावा जो केमिकल्स है, इंजीनियरिंग है, इनके लिए एक बड़ा मार्केट है। यूके जैसा हमने कहा एक स्थिर बाजार है। जब स्थिर बाजार होता है, जैसे हमने ट्रम्प का 2.0 टैरिफ देखा, हमने मिडिल ईस्ट डिसरप्शंस देखा, यूके एक में स्थिरता बनी हुई है। तो जब यूके में स्थिरता बनी हुई है, तो तमाम सारे ऐसे हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक यूनाइटेड किंगडम के तमाम बाजारों में बायर के साथ संपर्क कर रहे हैं और जितने भी ट्रेड फेयर हैं, एग्जीबिशंस, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यूपी का जो निर्यात का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि इसको हम 2030 तक 4 लाख करोड़ का निर्यात का लक्ष्य हम हासिल करेंगे, तो यूके का ये मुक्त व्यापार समझौता एक मील का पत्थर हमारे निर्यातकों के लिए साबित होने वाला है। और जो आज 201,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसमें यूके अपनी अहम भूमिका निभाएगा और हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं।
1: आलोक जी, एक तरह से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, आईटी में, फार्मा में, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सब में युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो युवा हैं, इनको किस तरह का लाभ होने वाला है रोजगार के नजरिए से?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं रोजगार सृजन की, तो जितना जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे लिए रोजगार के अवसर भी एक्सप्लोर होते हैं। एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ इंजन के तौर पर तमाम प्रदेश सरकारें देखती हैं और भारत सरकार का ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, चाहे वो आईटी हो, प्रोफेशनल्स हो या अन्य सर्विसेज हमारी, इन सब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज यूके जैसे बाजार में हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध हो रही है। बाहर का कोई यूके का अगर कोई इन्वेस्टर भारत में या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में कि हम वहां का इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, बाहर के हमारे पास ब्रांड भी आएंगे, यहाँ कंपनी स्टैब्लिश होंगी, रोजगार मिलेगा प्रदेश के तमाम ऐसे हिस्सों में। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई युवा बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई युवा यहीं पर ही पढ़ाई करके प्रदेश में अपनी सर्विसेज का लाभ लेते हुए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है सर्विसेज सेक्टर्स में भी या मर्चेंडाइज सेक्टर्स में भी, तो उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से देखने को मिलेंगी।
1: यूके के साथ जो समझौता हुआ, उसमें सरकार ने अपनी भूमिका निभाई और ये समझौता हुआ है। अगर हम बात करें आगे, और जो निर्यातक हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए के भी क्या सरकार किसी तरह से राह आसान कर रही है?
0: देखिए, एक तो मुक्त व्यापार समझौता अभी 15 जुलाई को कंक्लूड किया गया, जो कि ऑपरेशनल भी हो गया। अब इससे संबंधित हम ऐसे निर्यातकों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट

0: लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जहां पर हम निर्यातकों के बीच में विभाग जा रहे हैं वो आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी अवेयर हों इस मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के। उनको ये भी बताया जाए कि इस मुक्त व्यापार समझौते से जिन उत्पादों पर अभी तक आप अपने मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, ड्यू टैरिफ जीरो होने की वजह से अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी क्या किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार का जो हमारा निर्यात प्रोत्साहन विभाग है उसके माध्यम से हम यूके में बिजनेस डेलीगेशन को भी हम आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं ताकि हम नए बायर्स को हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ कनेक्ट कर सके। हम यूके से भी कुछ बायर्स को उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं जहां पर हम जो ऐसे छोटे एफपीओज हैं, छोटे कृषि वाले निर्यातक हैं, वो अगर बाहर नहीं जा सकते तो उनको हम उत्तर प्रदेश में ही बायर्स ला करके उनके साथ हम उनको कनेक्ट कराया जा सके ताकि बायलेटरल ट्रेड की दिशा में निर्यात और आयात को आगे बढ़ाया जा सके।
1: आलोक जी, जब हम कोई चीज निर्यात करते हैं तो जाहिर है कि हमको गुणवत्ता मानकों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं आप लोग कि गुणवत्ता जो मानक है उन पर खड़े उतरे और प्रोडक्ट को अप्रूवल मिले?
0: हाँ जी, देखिए क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, वो हमारा प्रोसेस फूड का सेक्टर्स है। इन सेक्टर्स पर ज्यादा हमें हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता होगी और सरकार के तमाम विभाग उन्होंने अपनी कमर कस ली है कैसे हमें निर्यातकों को सपोर्ट करना है, कैसे निर्यातकों को गाइड करना है, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, इन सभी के माध्यम से हम क्वालिटी पर आने वाले समय पर फोकस करेंगे। और
1: आलोक जी, जब ये समझौता हुआ है तो इसके जरिए यूके का भी कुछ सामान भारतीय बाजारों तक पहुंचेगा, तो उससे क्या किसी स्थानीय उद्योग है उनको किसी तरह की कोई हानि होने की?
0: देखिए इसमें जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है इसमें यूके का भी सामान हमारे देश में या प्रदेश में आएगा। भारत सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ है कि किसी भी तरीके का ऐसा उत्पाद जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान न पहुंचाए या हम उसको प्रोटेक्ट कर सके उसमें यूके के उत्पादों को राहत नहीं दी गई है। तो कुल मिला के जो छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको किसी भी तरीके का कहीं भी हार्म या नुकसान होने वाला नहीं है इस मुक्त व्यापार समझौते से।
1: जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से विकसित भारत की बात करती है लगातार सरकार और इस समझौते के जरिए हम आर्थिक विकास के किस तरह के नए आयाम को छू पाएंगे और विकसित भारत बनाने में कितना ये हेल्पफुल होगा?
0: देखिए जब विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, जब भारत विकसित होगा और जब भारत विकसित होगा तो हम आजादी के 100 वर्ष सेलिब्रेट करेंगे, उस दिशा में ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के मोर्चे पर जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारा स्टेबिलाईजेशन है वो स्थिर होता है। ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक मोर्चे पर भी, व्यापारिक मोर्चे पर भी और द्विपक्षीय मोर्चे पर भी ये मुक्त व्यापार समझौता एक अच्छा कदम भारत सरकार की तरफ से ये लिया गया है। और ऐसे कई मुक्त व्यापार समझौते आने वाले समय में सरकार बहुत तेजी से दुनिया के तमाम अन्य देश जो रह गए हैं उनके साथ भी हम भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द वो कंक्लूड किया जाए ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको और $5 trillion की अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे लेके जा पाए।
2: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा, मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। समय हुआ है सुबह के 9:25 का। इस समय हम प्रस्तुत करते हैं पुराने फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

कोहिनूर, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। नौशाद के संगीत से सजे इस गीत के बोल लिखे थे शकील बुदायूनी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है ताजमहल फिल्म से। इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत साहिर लुधियानवी का है और संगीत रोशन का।

आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया युगल गीत। अगले गीत में मोहम्मद रफ़ी का साथ देंगी आशा भोसले। गीत के बोल एक बार फिर साहिर लुधियानवी की और संगीत रोशन का। फिल्म का नाम है बहू बेगम।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना हसरत जयपुरी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था सूरज। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उजाला फिल्म का गीत। शंकर जयकिशन के संगीत से सजे इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने। गीत में आवाज़ें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

मन्ना डे और लता मंगेशकर के गाए। उजाला फिल्म के इस गीत के साथ ही गीत मंजिशा कार्यक्रम आप समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या शर्मा की आवाज़ में कुछ ब्रज लोक गीत। ये है पहली प्रस्तुति।

संध्या शर्मा की आवाज़ में आपने सुना ब्रज लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:59 और 38 सेकेंड हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

कुमार सानू और साधना सरगम की युगल आवाज़ों में ये था समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम था दीवाना। कार्यक्रम का अगला गीत चांदनी फिल्म से सुनिए। लता मंगेशकर के गाए इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है शिव हरी ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना चांदनी फिल्म में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है डर्टी पिक्चर फिल्म से। रजत अरोड़ा का गीत है, विशाल शेखर का संगीत और आवाज़ कमल खान की है।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सुर सरिता कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत में आपका साथ देंगे ए हरिहरन। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने और फिल्म का नाम है लम्हे

लम्हे फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और ए हरिहरन की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शिव हरि ने। कार्यक्रम का अगला गीत समीर का लिखा, प्रीतम के संगीत से सजे इस गीत को गाया है आतिफ असलम ने और फिल्म का नाम है रेस।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत एक बार फिर आतिफ असलम की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है अजब प्रेम की।

अजब प्रेम की गजब कहानी। आतिफ असलम के गाए इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का सुरसरता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग रामकली। आइए सुनते हैं।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन राग रामकली में। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध था, बोल थे आज राधे तोरे। द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध था, बोल थे जागरे सलोने बने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बॉक्स नंबर 111
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति को थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
3: साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए

0: अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है। और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूं हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद नीलम जी।
1: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है वो असल में क्या है?
2: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
1: जी,
2: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
1: जी।
2: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानी संवाद
1: जी,
2: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
1: जी।
2: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं।

0: जी
1: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
2: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही।
0: जी।
2: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण्ण जीवन स्मृति वो हैं, और उनको ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है, और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइफर कर सकता है, और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है, या नंदीनागरी है, या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं, उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो हैं संग्रहित हुई हैं, और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए, और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
0: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
2: निश्चित रूप से।
0: जी, मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ सातवीं, आठवीं, नवीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या ये केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
3: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
0: जी,
3: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं, और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी, शास्त्रार्थ की परंपरा शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूं कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम पांच तो बैठते ही थे, लेकिन पंचायत में पांच के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के

0: पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था।
1: जी।
0: तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं।
1: जी।
0: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निसृत हुआ है
1: जी,
0: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
1: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है। शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना,

0: मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना। जी मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को जीवंत किया जा रहा था।
1: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है
0: जी।
1: आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं
0: जी,
1: ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है। लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में न्यायालय में कोई पद्धति है उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था
0: जी।
1: तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को
0: जी,
1: तो एक स्पर्धा नहीं थी
0: जी,
1: ये सत्यान्वेषण का मार्ग था जी।
0: यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं और इसमें मतभेद हो सकता था, मन भेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था जी। यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है बहुत सुंदर पद्य है जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए
0: जी।
1: इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की, और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है AI पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सके, तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़े।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा
0: जी,
1: बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह

0: उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे, साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एआई हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है
1: जी।
0: आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र लिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं
1: जी।
0: और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है, उसके लिए एक सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे
1: जी।
0: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना। क्योंकि मैं मानता हूं एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्मराक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्मराक्षस को आप अपने वश में रखे
1: जी,
0: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए।
1: हाँ।
0: लेकिन ब्रह्मराक्षस यदि आपका वश में नहीं है, आपको खा जाएगा
1: जी।
0: तो सोचना पड़ेगा उसका उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है
1: जी।
0: हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता ने इसको देखा नहीं था। वंडरफुल
1: जी,
0: इसके साथ करना चाहिए।
1: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे, अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि बीटेक भारत में पहली बार शुरू हो रहा है
1: जी।
0: बीटेक पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है
1: जी,
0: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है
1: जी।
0: वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: बीटेक एआई और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है
1: जी।
0: ये कार्य कोई आईआईटी नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है
1: जी।
0: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया
1: जी।
0: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है
1: जी।
0: उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे
1: जी।
0: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है
1: जी। तो ये आने वाले कल की तैयारी है जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं
0: जी।
1: और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या

0: ही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे। तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोक मंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैत्तरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो है उस शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं। और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि, परमर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है उसी की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी, महत्वपूर्ण अवसर है, और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है शिक्षा की बजाय, क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है, आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी। जी, बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है यहाँ पर। अब मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: एक बहुत ही मुझे प्रिय है एक गीत, प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, जो कि हम तुम और वो फिल्म से है और जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने।
1: जी, और ये क्यों पसंद है आपको?
0: क्योंकि इसमें जो शब्दावली है वो संस्कृत परिनिष्ठित है, तो इस कारण से मुझे बहुत प्रिय है।
1: जी, इस गीत की विशेषता यही है। तो लीजिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना।
2: प्रिय

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति और समृद्ध भारतीय परंपराओं को जान रहे हैं, साथ ही हम ये भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति को और ऐसा क्या दिया जा सके कि वो जो ऊर्जा है उसे एक सही राह पर लेकर आगे बढ़े और हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारे युवाओं का भी इसमें लगातार योगदान बना रहे। ये प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री जी ने दी है मन की बात में उल्लेख करके नालंदा विश्वविद्यालय का। मैं प्रेम शंकर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
1: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
0: जी,
1: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है
0: जी,
1: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्योंकि वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त
0: जी।
1: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद, इनको श्रुति कहा जाता है
0: जी।
1: वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या है, वो मंत्र हैं
0: जी।
1: और मंत्र क्या है, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है। छंदा पादौ तु वेदस्य
0: जी,
1: छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ये है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं, चूंकि वो छंदोबद्ध हैं
0: जी,
1: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
0: जी,
1: जिनको कि श्री सूक्तम कहा गया है। ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, यानी लक्ष्मी और नारायण
0: जी।
1: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश
0: जी।
1: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनके ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है, लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मन सत्वव्रतये सितौ प्रजानाम प्रलये तमस्प्रसे अजाय सर्गस्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणा।

0: आत्मने नमः
1: जी,
0: यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के कारण ये सब करता है
1: जी।
0: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो हैं ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही रुद्र भगवान के जो हैं वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो देवी महात्म्य है
1: जी।
0: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
1: जी,
0: और ये फल भी देते हैं
1: जी। तो स्तुति का माध्यम है ये।
0: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है
1: जी। यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की
0: जी,
1: और श्री रुद्रम जैसा की नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
0: जी का स्वरूप है
1: जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहां पर एक विषय है, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा हैं।
2: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
1: जी।
2: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए हैं। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है, विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए। देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
1: जी,
2: यह इतिहास का भाग रहा है, इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं, इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है, और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है, आनो भद्रा कृतोयन्तु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
1: जी।
2: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं, भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
1: जी।
2: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक विशुद्ध आचरण बचते हैं इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं, हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है
1: जी।
2: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली है, संस्कृतियां बदली है, देश भी बदले हैं लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार।

0: विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
1: जी, और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है, और हम वो संस्कृति हैं जहां हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना है। जी, तो प्रेम शंकर जी, यहाँ मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
1: जी,
2: मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये भारत का संदेश देने के लिए मनोज कुमार ने बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और बड़ा ही प्रेरक वो बन पड़ता है, और विदेश में ये गाना हुआ है
1: इस वजह से आप सुनवाना चाहते हैं। जी, बहुत ही अच्छा सा गाना है, हम सभी सुनते हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को जान रहे हैं, आधुनिकता क्या है उसे समझ रहे हैं और हमारे युवाओं को आज किस प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है ये भी हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आज जान रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना उसमें एक शब्द आया ब्रह्म कमल डोमिनिकाना, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
1: जी निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है वह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है
0: जी।
1: और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतने अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारी प्राचीन शास्त्र हैं उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुम्बकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और हिंसा हैं, ये अज्ञानात्मक नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो हमें विजय प्राप्त करते हुए

0: देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है, साहस है, करुणा है, आत्मबल है, धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं
1: जी।
0: और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है
1: जी। और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं, हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी ना किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है, कभी वहाँ हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो हैं, चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
2: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागर्ध कश्चित् ब्रह्म। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ही ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग, योग क्या है? एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है
1: जी।
2: सूत्र दिए हुए, सूक्त दिए हुए, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
1: जी,
2: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
1: जी,
2: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है, और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
1: जी।
2: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
1: जी।
2: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा, संसार भी जुड़ रहा है।

0: क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
1: जी,
0: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है जिसमें मानव बन सके और देव बन सके
1: जी,
0: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है
1: जी,
0: क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में वो व्याख्यात है और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी
1: जी। यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं जी। प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिए नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा
1: जी,
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
1: जी,
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है
1: जी।
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है, मनी के मूल क्या है जॉब है, जॉब के लिए क्या करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम के क्या करना है तैयारी करनी है
1: जी।
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है, जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा। यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कौटिल्य कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है, समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है
1: जी,
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ चाहिए, लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा
1: जी।
2: तो आज दुनिया में मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है
1: जी।
2: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं, आज हमें आध्यात्मिकता को, हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है
1: जी।
2: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था
1: जी।
2: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो
1: जी,
2: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ, हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा
1: जी।
2: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानी शिक्षक
1: जी,
2: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व तो शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व तो निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी
1: जी। यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का, और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
2: धन्यवाद।

0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: नीलम जी, शुक्रिया।
0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
0: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें, संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ और संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे थे अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी आइए आप सुनते हैं, जिसमें आज आप सुनेंगे गोपाल सिंह परमार की आवाज में ब्रज लोकगीत। पहली रचना के बोल है झूला पीपर पै डरबाए दैयो।

0: गोपाल सिंह परमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये ब्रज लोकगीत। इस प्रस्तुति के बोल थे तीनों लोकन में अजब निराली शान। इसके साथ ही ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब संपन्न होता है। नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे नए तराने एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: विशाल डडलानी, श्रेया घोषाल और अमानत अली के स्वर में फिल्म दोस्ताना से सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है अन्विता दत्त गुप्तन ने और संगीत है विशाल शेखर का।

हेट स्टोरी 4। आइए सुनते हैं इस फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है संजय गुप्ता और मनोज मंतशिर ने, संगीतबद्ध किया है आरको ने।

सी पेशकश के साथ कार्यक्रम नई तरानी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के मीटर्स पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के

0: where she will hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart, Maia Sandu. President Munmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and interact with the members of the Indian community. This is a first-ever visit by Indian President to Moldova. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met President of Zanzibar of United Republic of Tanzania and Chairman of the Revolutionary Council Dr. Hussein Ali M. Winnie in New Delhi this morning. In a social media post, Dr. Jaishankar said, during the meeting they discussed expanding India-Tanzania cooperation in higher education, capacity building, water supply, health, artificial intelligence, digital and other priority sectors. He noted that the IIT Madras Zanzibar campus stands as a shining example of India's close partnership and enduring commitment to Africa's education and development priorities. Zanzibar is a semi-autonomous region of Tanzania. It has its own constitution, president, House of Representatives and flag. Dr. Hussein Ali Al M. Winwi, who is on a four-day official visit to India, will meet Vice President C.P. Radhakrishnan in the national capital today. The stage is set for a blockbuster FIFA World Cup final as defending champions Argentina will lock horns with European powerhouse Spain at the New York New Jersey Stadium tonight. Both the teams have produced impressive performances throughout the tournament and will now battle for the football's biggest prize. And that is the end of this news bulletin.
1: आज उत्तर प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को नई रफ्तार और नए सिमत मिली है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर करदा उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर की नई इमारत का इफ्तिताह रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट सिमत को जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर तालमेल और तेज तर रिस्पॉन्स फराहम करेगा। हेडक्वार्टर की नई इमारत को जदीद सहूलियात से आरास्ता एक जदीद तरीन डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें एक जदीद तरीन स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जो 24 घंटे सातों दिन काम करता है। इमारत में 200 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश के साथ एक जदीद ऑडिटोरियम, क्लासरूम्स, लेक्चर हॉल, एक हॉस्टल और एक लाइब्रेरी है। मजीद बरा रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक डिजिटल कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि आफात से बचाव, तैयारी और आगाही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत है जिसने इंसानी जंगली हयात के तनाजों को आफत के तौर पर दर्जाबंदी करके लोगों को राहत फराहम की है। लोगों को आफात से मुतालिक एहतियाती तदाबीर से आगाह करना भी मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत है। वजीर आला ने कहा,
2: एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बन करके आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद, जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है।
1: राम मंदिर ट्रस्ट की तंजीमनों और तब्दीलियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर निर्मोही अखाड़े की दरख्वास्त के दरमियान निर्मोही अखाड़े के महंत और ट्रस्ट के रुक्न दिनेंद्र दास की तरफ से जवाब सामने आया है। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने कहा है कि उन्हें दरख्वास्त के बारे में कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग 22 जुलाई को होने वाली है जिसमें मंदिर के इंतजाम और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद बरा ट्रस्ट के अंदर खाली असामियों को पुर करने पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ट्रस्ट की मीटिंग में मंदिर के काम को आसानी से चलाने से मुतालिक तमाम अहम मामलात को हल किया जाएगा। 23 जुलाई को संतों की मुजव्वजा मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि वैष्णव फिरके के तमाम संतों, महंतों और अखाड़ों का जो भी इज्तिमाई फैसला होगा वो सबको काबिले कबूल होगा और उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने तुलबा और वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो ऑप्टिकल मार्क सर्टिफिकेशन OMR शीट की तस्दीक के लिए सिर्फ असल OMR शीट जमा करें। जाली या AI से तैयार करदा OMR शीट जमा कराने के नतीजे में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा तुलबा और

विदेन से दरख्वास्त की जाती है कि वो तस्दीक के लिए सिर्फ असल ओएमआर शीट जमा करें। इम्तिहानी एजेंसी के मुताबिक हालिया दिनों में तस्दीक के लिए जमा कराई गई कई ओएमआर शीट में फ्रॉड पाया गया, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट का बगौर जायजा लिया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 10वीं दर्जे के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतायज डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत इस साल पहली बार 10वीं जमात के बोर्ड के दो इम्तिहान हुए। मरकजी इम्तिहान 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरा बोर्ड इम्तिहान 15 मई से 21 मई तक मुनक़िद हुआ। बोर्ड के मुताबिक दोनों इम्तिहान के मुश्तरका नतायज की बुनियाद पर इस साल मजमूई तौर पर 96.78% तलबा पास। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा

0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा को आज से रोक दिया गया है। मौसम के बेहतर होने और रास्तों को महफूज करार देने के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। यात्रा 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। रियासत में मॉनसून की बढ़ती हुई सरगर्मियों की वजह से गुज़िश्ता 36 घंटों से कई जिला में वक्फे-वक्फे से दरमियानी से भारी बारिश हो रही है। सुबह से होने वाली बारिश से लखनऊ, सुल्तानपुर, बदायूं, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, जौनपुर, पीलीभीत और अमरोहा में मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। कई जिला में दरिया की सतह भी बढ़ रही है। दरियास्ता महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी जिला के कुछ इलाकों में तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी करते हुए अगले 3 दिनों के लिए वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब हमारे बाल श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल मंडल।

जय हिंद प्यारे बच्चों, दिन रविवार है तो हमारे बच्चों को इंतजार होता है अपने पसंदीदा कार्यक्रम बालमंडल का। तो आज बालमंडल में आपके साथ है आपकी ललित दीदी। बच्चों, जब भी हमें कोई गीत बहुत प्यारा लगता है तो जानते हैं उसे हमें बार बार गुनगुनाने का मन करता है। ऐसे ही एक गीतकार थे गोपालदास नीरज। गोपालदास नीरज केवल एक गीतकार नहीं थे बल्कि वे भावनाओं के ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने शब्दों को अमर बना दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीरज जी पहले एक अध्यापक भी रहे। वे मंच के सबसे लोकप्रिय कवियों में गिने जाते थे। जब वे अपनी मधुर आवाज में कविता सुनाते थे तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। नीरज जी ने हिंदी फिल्मों के लिए ऐसे ऐसे गीत लिखे जो आज भी हर किसी की जुबान पर है। उनके गीतों की भाषा बहुत सरल होती थी लेकिन उन गीतों में जीवन का सच्चा दर्शन झलकता था। बच्चों, उनके गीत सीधे दिल में स्थान बनाते थे, हमारे दिल को छूते थे। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करते थे बल्कि जीवन जीने की हमें प्रेरणा दिया करते थे। उनके लिखे गीत हमें आज भी समय का सदुपयोग करने और अवसरों को पहचानने की सीख देते हैं। बच्चों, यही कारण है कि उन्हें गीतों का राजकुमार और गीतों का जादूगर भी कहा जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उन्हीं के यादगार गीत जिन्हें हम कहते हैं गीतों के जादूगर। जीवन में सही को सही और गलत को गलत कहने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। कई बार बच्चों, हम अपने सामने गलत होते हुए देखकर भी बस मौन हो जाते हैं और इसका भुगतान हमें जीवन भर करना पड़ता है और तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है और हम यही कहते हैं कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो आज हम शुरुआत करते हैं उन्हीं के सुप्रसिद्ध

0: तो बच्चों, ये था गोपाल दास नीरज का लिखा ये सुप्रसिद्ध गीत। बच्चों, हम आपको और भी गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति का साहस पूरे देश का इतिहास बदल सकता है? भारत के इतिहास में एक ऐसा ही नाम है, मंगल पांडे का। मंगल पांडे को भारतीय संग्राम का प्रथम क्रांतिकारी नायक माना जाता है। इनकी विद्रोह की एक चिंगारी ने पूरे भारत में आजादी की मशाल जला दी थी। उस समय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल के कारतूस दिए गए, जिनके बारे में ये माना जाता था कि उन पर चर्बी लगी होती थी। इन कारतूस का सिरा दांतों से काटना पड़ता था। इससे सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। मंगल पांडे ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। उनका यही साहस आगे चलकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना था। मंगल पांडे का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस का अर्थ केवल युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि सत्य और न्याय के लिए निर्भय होकर खड़े हो जाना है। सच तो यह है कि जो मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, वही सच्चा वीर कहलाता है। और मंगल पांडे उन वीरों में से थे जिन्होंने भारत मां के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। तो बच्चों, ये तो हमने आपसे बात की अद्भुत साहस की मिसाल मंगल पांडे के विषय में, और गीत भी हो गया, संगीत भी हो गया, और आपसे चर्चा भी कर ली हमने। और बच्चों, अब लिए चलते हैं, आपको सुनवाते हैं एक प्यारी सी कहानी, चालाक बंदर।
1: बच्चों, किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वे अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगर ने बताया कि वहां खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत से मीठे फल मगर को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। एक दिन बात बात में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी के पार अपने घर में रहती है। तब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिए। इस तरह मगर रोज जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगर की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा, अगर वह बंदर रोज रोज इतने

0: मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं तो उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वे नहीं मानी। मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को पीठ पर बैठाकर अपने घर ले जाने लगा। नदी के बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बता दी। इस पर बंदर ने कहा, वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है, वह उसे हिफाजत से पेड़ पर ही रखता है, इसलिए अब वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर कहा, जाओ मूर्खराज, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकालकर अलग रख सकता है क्या? हाँ तो बच्चों, बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त में हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी कहानी चालाक बंदर। बच्चों, हर बच्चे के अंदर देश का एक वीर सपूत छुपा होता है। बस आवश्यकता होती है उस आत्मविश्वास और वीरता के भाव को पहचानने की। तो आइए सुनते हैं ये बाल गीत, हम सपूत देश का नाम बढ़ाएंगे।

बच्चों, हमें विश्वास है कि आप किसी भी बाधा से बिना घबराए आगे बढ़ते जाएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों, आरंभ में हमने आपसे वादा किया था कि नीरज जी के और भी गीत आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं उनका एक और ये प्रसिद्ध गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बच्चों, हर दिन हमारी जिंदगी का कितना समय मोबाइल स्क्रीन चुरा लेती है, क्या आपने कभी सोचा है? लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर यही समय आपके दिमाग को और तेज, याददाश्त को और मजबूत तथा सोचने की क्षमता को और बेहतर बना दे, तब कैसा हो? बच्चों, मोबाइल स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से हमारी आंखों पर दबाव पड़ता है और पढ़ाई से भी ध्यान

भाई देखिए, जब आप बहुत देर तक मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी आंखें तो खराब होंगी। आजकल तो बच्चे आउटडोर गेम्स की जगह अधिकांश समय फोन पर बिताते हैं। वहीं यदि ब्रेन गेम्स, हमें सोचने चाहिए, नए तरीके खोजने चाहिए, ये हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाता है और धैर्यपूर्वक निर्णय लेने की आदत सिखाते हैं। यदि आप ब्रेन गेम्स लेंगे तो ब्रेन गेम्स जैसे शतरंज हुआ, सुडोकू हुआ, पहेलियाँ, शब्द खोजना, क्रॉसवर्ड और गणितीय जो पजल्स होती हैं, न केवल ये लोग ये चीज़ें जो हैं वो मनोरंजन करते हैं बल्कि हमारी याददाश्त और एकाग्रता, तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। बच्चों, तेज़ दिमाग जन्म से ही नहीं मिलता, उसे अभ्यास से बनाया जाता है। मोबाइल स्क्रीन हमें कुछ समय के लिए मनोरंजन देती है, लेकिन ब्रेन गेम्स हमें जीवन भर काम आने वाली कौशल सिखाते हैं। बच्चों, फूलों का खिलना यह तय करता है कि इन्हें कुछ समय बाद मुरझाना है। इसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना हर पल खुशी के साथ बिताते हैं, कुछ गाते, कुछ गुनगुनाते, इस तरह।

हमारे बाल श्रोता सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम बाल मंडल आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं आप सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुनिए गजल नीता एडवर्ड तोड़ने की आवाज में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में नीता एडवर्ड तोड़ने की आवाज में आपने ये गजल सुनी। आइए अब सुनते हैं अगली पेशकश। गजल के बोल हैं है अजीब शहर।

है अजीब शहर की जिंदगी, ना सफर रहा ना पयाम है। नीता एडवर्ड तोरनी की आवाज में आपने सुनी ये गजल। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर।

0: first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi, and football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि यह बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे

0: न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष

0: डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर, मोल्दोवा, उत्तरी में

मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई हैं। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से, और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं नाटक मेरा गुल्ला कहाँ है। आलेख है पद्मा सचदेव का, निर्देशक है सुदर्शन कुमार।

0: Сама все ще рукару. कहानी कहीं से भी शुरू हो सकती है और पात्रों के नाम हो सकते हैं, कुछ भी। जैसे जैसे कोई एक पात्र परमा यानी मैं, अर्थात
1: अभी अभी समाचार मिला है कि आतंकवादी गुलाम मोहम्मद उर्फ गुल्ला पकड़ा गया।
0: हाँ।
1: उसने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का अपना विशेष संबंध बताते हुए महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। पूछताछ जारी है और ये भी पता चला है कि उसने अपने गिरोह के बारे में
0: डल झील के नीले पानी में सुर्ख कमल, उसके हाथ में लहूलुहान कमल। ये मेरा गुल्ला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
2: कब ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर अंकल? पेट पर बड़े बड़े अब तो मेरी हड्डियां दुख रही हैं। ओ गया है मन मेरा ये बुझी बुझी आंखें देखकर। कब यहाँ से आजादी मिलेगी डॉक्टर? कब जाऊंगी यहाँ से?
3: ऐसा क्यों सोचती हैं? आपके अस्पताल कैद खाना है। सच मानो बेटा, ऐसी जगह बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ही है। और फिर
2: ये खुला आकाश, खिड़की से लगातार झांकता हुआ ये हरियाली, ये सबसे आसार, मुझे मालूम है आप यही सब कहेंगे। परमा, मेरा नाम परमा है डॉक्टर अंकल।
3: हाँ, सी डियर परमा, बेकार नाराज होना छोड़ दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। दवाई रेगुलरली ले रही हो ना बेटा?
2: हाँ, वो
3: सिस्टर।
4: यस डॉक्टर।
3: बी केयरफुल।
4: जी।
3: देखो परमा बेटी, ये सिस्टर जैसा कहती रहेंगी, दवाई डाइट वक्त से लेती रहना।
4: जी।
3: समझ गए?
4: जी अंकल।
3: अच्छा डॉक्टर, लेट अस मूव।
5: यस सर।
3: आइए।
6: मैं आ गया अम्मा जी।
4: अरे गुल्ला, साहब नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं आना चाहिए था तुम्हें।
6: नहीं मुझे जी, वो कुछ नहीं कहेंगे, ये डॉक्टर हाफिज साहब है ना, गुस्सा करते हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं, नेक। मुझे जी, ये देखो मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ, अपने घर में बनाया है, रेती ने भेजा है। रेती मेरी बीवी।
4: अच्छा, लेकिन गुल्ला ये सब तुम क्या कर रहे हो?
6: क्या कहती हूँ मुझे जी, आप पराई हैं, पांचाल पहाड़ के पार आपका घर है, वो क्या कहते हैं वो,
4: जम्मू।
6: हाँ जम्मू, वो भी तो अपना ही मुल्क है।
4: सो तो है कुल्ला, अपना अपना, खैर खैर, सभी कहाँ अपने होते हैं कुल्ला।
6: अरे ये आपकी आंखों में आंसू, मुझे कोई और ना सही, मैं आपका हूं ना, आपका बेटा गुल्ला।
4: कहाँ रोती हूँ गुल्ला, ये तो ये बीमारी है ना, मुझे बीमारी तंग कर रही है गुल्ला, तभी तो।
6: क्या क्या अलील बीमार यहाँ से तंदुरुस्त होकर गए, वो तो मेरी इन आंखों ने देखा मुझे जी। हाँ तब मैं यही 15

0: साल का छोकरा था जब यहाँ काम पे आया था। आप दिल करो मां जी, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, खुदा गवाह। मां जी, आपको यहाँ से छुट्टी मिलेगी तो आप हमारे घर आओगी ना?
1: हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी।
0: हमारा वहाँ आस्थान है ईश्वर में, वहाँ मैंने डोरी बांधी है तुम्हारे जल्दी सेहतयाब होने के लिए।
1: ईश्वर कहाँ?
0: वही निषाद बाग के पास, जहाँ मैं रहता हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: मजी, वहाँ वहाँ आप लोगों का मंदिर भी है ना?
1: हाँ हाँ।
0: वहाँ एक बाबा जी रहता है, बड़ा फकीर है।
1: अच्छा?
0: हाँ, और मोजी जो भी वहाँ निषाद घूमने जाता है जरूर बाबा जी के आगे मत्था टेकता है, आस्थान में जाके तब रुक लेता है।
1: हाँ भाई, ये तुम्हारा कश्मीर तो
0: गलत गलत मोजी गलत।
1: क्या?
0: पहले बोलो बेटे ये हमारा कश्मीर है।
1: अच्छा।
0: अब आगे बोलो मोजी।
1: बेटे ये हमारा कश्मीर। हर तरह से सुंदर है कश्मीर, तन से सुंदर, मन से सुंदर, जहन से भी सुंदर। अरे ऋषियों की भूमि है ये, सूफी फकीरों की सरजमीन।
2: संवाददाता के अनुसार आतंकवादियों ने जिसे गोली से उड़ाकर लाश गंदे गटर में फेंक दी थी उसकी अभी पहचान होनी बाकी है, लेकिन कुछ सूत्रों से पता चला है कि उन आतंकवादियों
3: ने बंद कर दो ये सिलसिला, इस आतंकवाद ने तो हमारी सुबह लहूलुहान कर दी। रिश्ते रिश्ते दहशत देने लगे।

0: उन्हीं दिनों, उन्हीं दिनों एक दिन जब मैंने उसे पास बिठाकर पूछा था, गुल्ला एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे?
1: पूछो पूछो मौजी, बुरा क्यों मानने लगो?
0: ये जो तुम मुझे मौजी कहते हो,
1: मौजी कहते हो? हाँ, यही पूछना चाहती हो ना, मौजी क्यों कहता हूँ?
0: हाँ वो नहीं,
1: मैं जानता हूँ। आप सोचती हैं मैं उम्र में 5-6 साल बड़ा और माँ कैसे हो गई आप?
0: नहीं वो ऐसी बात नहीं है।
1: हाँ हाँ बात है, और यही है, मुझे आप बिल्कुल नहीं समझो बीबी जी, मेरा भी सोच समझ है, दिल है, मैं समझा था आप अपना है। अच्छा है आपको माँ का इज्जत दें।
0: गुलाब गलत नहीं समझो मुझे, अरे मैं तो वैसे ही पूछ बैठी। हाँ,
1: पूछ बैठी वैसे ही, आप क्या जाने बीवी जी।
0: हाँ पहले मौजी कहो तो मैं आगे सुनूंगी।
1: चलो हाँ, तुम नहीं जानती हो इस गुल्ला को, ये कितना खुश होता है किसी को मौज कहते हुए। हमें हमें अपने बब्बा मौजी ने सिखाया है, बार बार सिखाया है, बेटा पराई औरत माँ बहन बरोबर होती है।
0: कितने अच्छे होंगे तुम्हारे माँ बाप।
1: हाँ, और इसी में उसकी इज्जत है और अपनी इज्जत है।
0: अब गुलाब बस भी
1: मुझे सच है, मैं आपसे उम्र में बड़ा है, मेरा शादी हुआ है, मगर मगर तुम जब यहाँ भर्ती हुआ, तुम्हारा हाल देखकर हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, लगा था मेरी मेरी माँ जैसे बीमार है, मैं कुछ खिदमत करूं।
0: गुलाब बस भी करो ना, मुझसे गलती हो गई, लो माफ कर दो।
1: हम क्या माफी देगा, अब बताओ डॉक्टर हाफिज आए थे राउंड पर?
0: हाँ आए थे।
1: क्या कह गए?
0: डॉक्टर कॉल से कह रहे थे पेशेंट पहले से इम्प्रूव कर रहा है, यानी
1: इंशाल्लाह। सच मानो मुझे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, बिल्कुल सेहतमंद हो जाओगी। इस डॉक्टर साहब के हाथ में शफा है।
0: सभी का भला हो गुल्ला। अरे गुल्ला तुम्हारा पूरा नाम क्या है?
1: मेरा मेरा पूरा नाम? हाँ? गुलाम मोहम्मद।
0: गुलाम मोहम्मद।
1: और बुलबुल?
0: हाँ अरे वाह, बुलबुल, गुलाम मोहम्मद बुलबुल।
1: हाँ किस्सा यूं है मुझे, हमारे घर में ना परदादा के दिनों में एक मलंग आकर ठहरता था, बुलबुल मलंग।
0: अच्छा।
1: बड़ा मेहरबान था।

0: मेरे परदादा पर कोई बेटा नहीं था ना उसका। एक दिन मलंग का जो कंग जल रहा था ना, अलाव मजी अलाव
1: धुनी,
0: हाँ बस वही, उसमें से इतना सारा अंगारा लिया और अपने मुंह में डालकर चबाने लगा जैसे शीरिन।
1: तो
0: क्या सुल्तान भट्ट को मेरे परदादा के, नहीं नहीं मुझी वो बाद में, पहले ये सुनो।
1: क्या?
0: मलंग था ना, हाँ? अंगारा चबाता रहा और सुल्तान भट्ट के सिर पर हाथ रखा, अलाव में से थोड़ा सा तबरुक, सुआ मुझी सुआ, हम उसे तबरुक कहते हैं, वो मेरे परदादा को दिया और बोला अल्लाहु, जा सुल्ताना जा, अपनी घरवाली को कल बड़े सवेरे खिलाना, जा मौज दीवी तुझ पर मेहरबान हो गई, और कल जिस वक्त मंदिर में घंटी बजेगी और आस्तान मस्जिद से अजान आएगी, अल्लाहु तू ही तू अल्लाहु। तो क्या था, सुल्तान भट्ट ने हुकुम बजा लाया। कैसे नहीं लाता मौजी, मरना था उसे, मलंग बड़ा गरम था, मेहरबान होता तो वारे न्यारे करता, और गुस्सा हुआ तो कहर ही कहर।
1: तो फिर?
0: फिर क्या था मौजी, मेरा दादा पैदा हुआ, फिर मेरा बब्बा पैदा हुआ, फिर मैं जन्मा। और मेरा दादा था रहीम भट्ट, खुदा उसकी मगफिरत करे, सभी उसे बचपन से ही रहीम बुलबुल कहते, और इस तरह हमारी कौम बुलबुल हो गई।
1: और तुम हो गए गुलाम मोहम्मद बुलबुल। गुलाम बुलबुल।

0: बिल्कुल। अस्पताल का एक साधारण सा खिदमतकार, खुद भी एक मलंग मस्ताना, जिसे काम से काम बीमारों की खिदमत करना, मरीजों के बिस्तरों की झाड़ बुहार, वार्ड की सफाई, पोछा मारना, समय से आना, हंसता चेहरा, अंबरी सेब जैसा मेरा गुल्ला, गुल है, फूल है।
1: हेलो परमा जी,
2: क्या लिख रही हैं?
0: कुछ नहीं परमा जी, नहीं अंकल, आप हमें बेटी बोलिए।
2: ओ अच्छा अच्छा, हाँ बेटी, क्या लिख रही थी, डायरी?
0: नहीं डायरी क्या अंकल, कभी मूड हुआ तो बस अपने को बिजी रखती हूँ।
2: अच्छा अच्छा,
0: कुछ नोट ऐसे कुछ बेमतलब।
2: अरे भाई तो हमें भी सुनाओ ना कभी, देखें क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी।
0: आप तो मजाक कर रहे हैं अंकल, मैं और भला लिखना जानूं?
2: नहीं तुम भले ही छुपा रखो बेटी, लेकिन उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है।
0: किन्होंने क्या कह दिया?
2: वही जो तुम्हें बेटी की तरह रखते हैं, बड़शाह साहब। वही कहते थे भाई आप राइटर हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे गीत लिखती हैं।
0: मैं किस किस का एहसान लूं अंकल, बड़शाह अंकल का, आपका,
2: अरे
0: सिस्टर्स का, अपनों के किनारे की हुई भुलाए बिसराए।
2: नहीं नहीं बेटी,
0: और आप लोग।
2: देखो बेटी, ऐसा सोचती रहोगी तो रिकवर नहीं कर पाओगी
0: अंकल।
2: और फिर आप ये कैसे मान बैठी कि हम कोई एहसान कर रहे हैं?
0: लेकिन नहीं वो मालूम।
2: देखो बेटी, जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो अपने काम काज में लग जाओगी, किसी के काम आओगी, ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है।
0: डॉक्टर अंकल, क्या मैं कभी सच में ठीक हो सकती हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त?
2: डॉक्टर कभी ना उम्मीद नहीं रहता है परमा बेटी। अरे हम लोगों में यही बात तो है कि हम टूटती हुई नब्ज में भी जिंदगी की कोई ना कोई जुम्बिश महसूस करते हैं।
0: तो आपको लग रहा है कि ये इस लाश में अभी जिंदगी मौजूद है?
2: देखिए, आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। अपने आप को समेट लीजिए, हमें कॉपरेशन दीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
0: जी जी अंकल।
2: देखो मैंने गुल्ला को कह रखा है वो तुम्हें बाहर लॉन में घुमाने ले जाया करेगा।
0: जी अंकल, मैं शिकारे में डल झील घूम कर आना चाहती हूँ।
2: अच्छा,
0: वो बहुत खूबसूरत कमल हुआ करते हैं ना, कोई कह रहा था।
2: हाँ हाँ, आप जा सकेंगी।

0: लेकिन कभी कभार।
1: अंकल।
0: हाँ, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल तुम बाहर लॉन में सुबह शाम टहला करोगी।
1: जी।
0: इतना काफी है?
1: जी, जिंदाबाद डॉक्टर अंकल। मैंने अब फैसला किया है, आज के बाद कभी खुद को टूटने नहीं दूंगी। हाँ, मेरे पास बुलबुल मलंग की भभूत है, डॉक्टर अंकल का स्नेह मिला है मुझे, भरपूर स्नेह, ढेरों। एक की दुआ है और दूसरे की दवा। अब मैं जीऊंगी हर तरह की मृत्यु के विरुद्ध, पूरी उम्र जीऊंगी। चुटकू बाबा, आओ।
2: दो बिस्कुट?
1: देती हूँ बाबा, ये देखो, ये पैकेट मंगवा कर रख दिया है मैंने चुटकू बाबा के लिए।
2: दो?
1: पहले ये बताओ चुटकू बाबा, ये शबी क्या होता है
2: और ये चुटकू क्या होता है?
1: अरे चुटकू होता है चुटकू, छोटा बच्चा, प्यारा। लेकिन मेरा नाम तो परमा है।
2: तुम जो भी हो, परमा हो, पमा हो, जो भी हो, लेकिन मेरी शबी हो।
1: शबी?
2: शबी, बड़ी बुरी हो तुम, जल्दी से बिस्कुट नहीं देती।
1: अच्छा लो, बिस्कुट लो और कुतर कुतर कर खाओ खरगोश की तरह।
2: ये तुमने पूछा शबी, मेरे सिर के बाल क्या हो गए?
1: अरे हाँ, ये क्या हाल बना रखा है चुटकू बाबा।
2: बस डॉक्टर ने उस तरह फिरवा दिया, सिर चुटकू का साफ बजट।
1: चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे बाल बड़े उलझे उलझे रहते थे। हाँ,
2: तुम्हें बुरा नहीं लगा?
1: लो, क्यों बुरा लगने लगा चुटकू बाबा?
2: मैं सुंदर हूँ ना शबी?
1: बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, मेरे चुटकू बाबा।
2: चुटकू बाबा, चुटकू बाबा, चुटकू बाबा, चुटकू बाबा,
1: बाबा चुटकू,
2: चुटकू बाबा,
1: किसी देवता सा निर्मल फरिश्ता।
2: शबी?
1: हाँ बाबा।
2: तुम जब कल गुल्ला चाचा के साथ डल घूमने गई थी शिकारे में?
1: हाँ गई थी, और सिस्टर दीदी भी हमारे साथ थी।
2: सिस्टर दीदी भी हमारे साथ थी, मुझे क्यों नहीं साथ ले गई थी?
1: मुझे क्या मालूम था। अच्छा अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, माफ कर दो चुटकू बाबा।
2: दोबारा कहीं जाओ मुझे पूछ के जाना।
1: कितनी खूबसूरत है डल झील चुटकू बाबा, और
2: कमल देखे?
1: हाँ।
2: और उनके पत्ते
1: देखे?
2: ये जल परियां इन कमलों के बीच बीच में जब नहाती हैं तो उनकी हंसी से मोती बिखर जाते हैं इन हरे हरे पत्तलों पर।
1: अरे तुमने ये सभी बातें कहाँ से सीखी है चुटकू बाबा?
2: सुबह के सूरज से, रात के चंदर से, पेड़ों से, पोषणूल से, खुदाई ने हमें सभी बता दिया है।
1: तुम तो सचमुच बाबा हो चुटकू।
2: शबी, ये मैंने सिर साफ उचित करवा दिया है ना।
1: हाँ?
2: अब मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, मेरी सारी बीमारियां चली जाएंगी।
1: और फिर तुम घर जाओगे?
2: हाँ जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।
1: अरे चुटकू बाबा, फिर इन बिस्कुटों का क्या होगा? अरे इन्हें कौन खाएगा?
2: क्यों, मैं घर जाऊंगा तो क्या तुमको यही रख छोड़ूंगा?
1: तो
2: तुम भी मेरे साथ चलोगी?
1: कहाँ?
2: मेरे घर, हम इकट्ठे रहने लगेंगे।
1: इतनी जगह है तुम्हारे घर में?
2: अरे शबी, हमारा मकान है बड़ा, ऊपर नीचे साग बाड़ी पेड़ है,
1: और
2: हमारे आंगन के बीच से कुलिया बहती है बाजारों की छाई छाई में, और मैं वही बैठा देखता रहता हूँ पानी में।
1: क्या
2: देखता हूँ? खुदाई गा रहा होता है।
1: चुटकू।
2: और मैं अपने मदरसे का पेड़ गाने लगता हूँ, साहेब तेरी आस लगी है बात थाम ले, राह दिखा दे। मेरे घर आओगी ना शबी, मैं अच्छा हो जाऊंगा, पढ़ूंगा, अगली जमात में जाऊंगा, फिर अगली, मैं बड़ा होता जाऊंगा, इतना, फिर इतना, फिर डॉक्टर जितना।
1: और मैं
2: छोटी हो जाऊंगी, छोटी।
1: हाँ?
2: तुम्हारी डोली सजेगी मेरे साथ।
1: क्या?
2: हाँ शबी, ना नहीं करना शबी, मैं ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा।
1: चुटकू बाबा, ये लो और बिस्कुट लोगे?
2: नहीं।
3: अरे तुम यहाँ बैठे हो चुटकू, वहाँ डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं।
2: मैं अपनी शबी के पास बैठ

0: बिलाओगी ना ऐसे मीठे कुरकुरे?
1: हाँ लाऊंगी, चलो अब जल्दी से जाओ जाओ जाओ, नहीं तो डॉक्टर अंकल ना मुझ पे गुस्सा करेंगे। जाओ
0: चलो ना बिल्ला चाचा, फिर आऊंगा सभी।
2: बाय बाय।
1: मनोज यहाँ होता तो समझ पाता जिंदगी की कुछ वास्तविकताएं, जान पाता रिश्तों का सत्य।
3: परमा।
1: कौन?
3: मैं, मनोज।
1: अरे तुम कब आ गए मनोज? ना आता ना पता, ना चिट्ठी ना खबर।
3: मैं यहीं था, तुम अब कैसी हो?
1: बस सांस चल रही है, काफी नहीं है क्या?
3: झूठ नहीं बोलो।
1: झूठ क्या?
3: अब तुम बीमार नहीं रही।
1: तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या?
3: मुझे अच्छा लगे ना लगे, तुम्हारी बला से। गुल्ला तो खुश है।
1: गुल्ला मेरा बेटा है मनोज, वो तो खुश होगा ही।
3: और छुटकू? छुटकू तुम में अपनी बीवी देख रहा है।
1: छुटकू तो बच्चा है, बच्चे को क्या मालूम वो क्या कह रहा है।
3: हाँ वो कह रहा है और तुम सुनकर खुश हो।
1: तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है?
3: क्यों ना हो, सोचता हूँ मेरे साथ अंतरंग तलाशने वाली औरत औरों की खातिर डोली में बैठने के ख्यालों से कैसी खुश है।
1: क्या बकवास कर रहे हो?
3: चिल्लाओ नहीं।
1: तुम वास्तव में नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं?
3: हाँ हाँ मैं नहीं चाहता तुम औरों के लिए जिंदा रहो, मुझे छोड़कर।
1: तुम बड़े खुदगर्ज हो मनोज। अरे तुमने तो कभी चाहा ही नहीं कि मैं परमा बनी रहूं, एक औरत, एक व्यक्ति।
3: और तुम्हें भी ये पसंद नहीं हुआ कि तुम पूरे तौर से खुद को मुझे सौंप दो।
1: परमा कोई माल सामान नहीं है मनोज, जो तुम्हें सौंप दिया जाता, तुम्हारे हवाले कर दिया जाता।
3: हमने एक दूसरे का होना स्वीकार किया था परमा।
1: एक दूसरे का होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम खुद को दूसरों के हाथों मिस्त्री की डली की तरह थमा दो और वो जब चाहे तुम्हें चाटने लगे। मनोज तुम शब्दों के जाल में जिंदगी क्यों तबाह करना चाहते हो?
3: वो जिंदगी है ही कहाँ?
1: तो हमारे दरमियान जो है वो क्या है?
3: वो कुछ और हो सकता है, जिंदगी नहीं।
1: मैंने कहा ना तुम अनचाहे शब्दों के चक्रव्यूह में फंस गए हो।
3: जिससे बाहर आना अब सीखना है।
1: हाँ मनोज मान लो मेरा कहा और छोड़ दो ये ओढ़े हुए अपने तर्क। सहज हो जाओ मनोज, बिल्कुल सहज, समाधिस्थ काल की भांति, जो होता है स्वतः स्वाभाविक, बिना किसी तनाव के।
3: जब तुम यथार्थ का सामना नहीं कर पाती हो तो दार्शनिक होने का एक असफल सा नाटक करने लगती।
1: इसे सच मानो मनोज, ये नाटक नहीं है, जिंदगी का सबसे बड़ा यथार्थ है ये। इसी में संतोष है, इसी में आनंद है। मनोज ये गुल्ला, ये जो मेरा कुछ नहीं लगता, न जात से न धर्म से, लेकिन फिर भी मुझे स्वस्थ देखना चाहता है, बीमारी से मुक्त। और तुम्हारा समाज, तुम्हारा मेरा सभ्य समाज मुझे मौत के इस कगार तक ले आया। जब मैं धार से नीचे गिरने ही वाली होती हूँ, कौन मुझे उभार कर लाता है? मनोज, मनोज, कहाँ हो मनोज? मनोज, मनोज कहाँ है? लेकिन वो यहाँ कैसे? मनोज तो कब का मर चुका।
4: बाजी।
1: एक कमजोर आदमी जो ना मेरे लिए लड़ सका।
4: क्या बड़बड़ा रही हो मां जी?
1: ना अपने लिए ही जीवित रहने की हिम्मत कर सका। मनोज तुम कब के मर चुके हो, भीतरी अनिश्चय के आतंक के शिकार। काश
4: मां जी। क्या बात है मां जी? मौजी
1: क्या बात है, क्या हो रहा है?
4: मौजी ये आंसू क्या सोच रही थी?
1: नहीं कुछ भी नहीं।

0: माफी साहब।
1: क्या बात है अंकल?
2: खबर है कि अब हमारी ये बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है।
1: सच?
0: शुक्र खुदाया।
2: हाँ बेटी, हमने जो नए टेस्ट किए थे ना तुम्हारे
1: जी,
2: वो सभी सही और साफ निकले।
1: अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंकल?
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो कब छुट्टी मिलेगी अंकल?
2: तो हमारी बिटिया इतना ऊब गई है हम लोगों से है?
1: नहीं नहीं अंकल, जिस दिन आपने छुटकू बाबा को ठीक ठाक करके रुखसत किया था ना, उस दिन मैं बहुत खुश थी।
2: हाँ, खुश तो होना ही था। क्या कहता रहता था वो कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। शरारती कहीं का।
1: सच मानिए अंकल, आज मैं उतनी खुश नहीं हूँ।
2: उतनी खुश नहीं हो? अरे भाई क्यों?
1: मैं यहाँ से जाकर आप लोगों को बहुत मिस करूंगी।
2: बेटी, अस्पताल कुछ भी हो सकता है, जन्नत जिंदगी का ठिकाना हो सकता है, लेकिन घर तो नहीं हो सकता ना।
1: और जिसका कोई घर ही ना हो अंकल?
2: जिसका कोई घर ही ना हो, उसके लिए यहां से ठीक होकर जाना घर की तलाश की सिमत में एक इंस्पिरेशन है। बेटी, हम लोग जो है ना, हम उस शख्स को जिंदगी जीने का हौसला देकर रुखसत करते हैं जो यहां किसी बीमारी के बहाने आया होता है।
1: डॉक्टर अंकल।
2: हाँ बेटी, खुश होकर जाओ, खुश होकर जाओ। परमा बेटी, तुम पर जिंदगी की देवी मेहरबान है, वही तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता भी दिखाएगी।
0: आमीन।
2: सुम्मा आमीन कुल्ला, सुम्मा आमीन। और यही जिंदगी आपके लिए एक और खुशखबरी लिए आई है।
1: क्या अंकल?
0: कैसी खुशखबरी साहब?
2: बर्षा साहब ने यहाँ से जाने पर आपके लिए नौकरी का इंतजाम भी कर दिया है। और वो ऑर्डर ये है।
0: शुक्र खुदा, लाख लाख शुक्र है।
1: कितना सार्थक लगता है अपने ही लिखे शब्द कभी कभी दोहराना। जितने सार्थक उतने ही दिलचस्प। 30-35 साल का अरसा, शब्द अर्थ बदलते गए, अर्थ नए शब्द बनाते चले।
3: आज की ताजा खबर, आतंकवादी गुल्ला पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, आतंकवादी गुल्ला पकड़ा गया। आतंकवादी गुल्ला पकड़ा गया।
1: आज के अखबार में ये जो चेहरा है, ये मेरा गुल्ला नहीं हो सकता।

0: Come in, please.
1: आओ मुझे, आओ।
2: नमस्कार अंकल।
3: अरे परमा बेटी, खुश रहो बेटी, बैठो बैठो बैठो। बेटी एक बढ़िया खबर है तुम्हारे लिए।
1: कैसी खबर डॉक्टर साहब?

अभी आप सुन रहे थे नाटक मेरा गुल्ला कहाँ है। आलेख था पद्मा सचदेव का, निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। श्रोताओं, दोपहर कालीन सभा के प्रसारण के अंतर्गत आप सुन रहे थे अभी नाटक, और अब सुनिए अगला कार्यक्रम, लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।

स्वरिंद किरकिरे के लिखे हुए गीत को शांतनु मोइत्रा के संगीत के साथ आपने सुना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म थ्री इडियट से। अब सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीर की रचना, आवाजें हैं पिंकी, प्रीति और प्रशांत की, फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सुनिए फिल्म ताल से आशा भोसले, उदित नारायण और ऋचा शर्मा की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार हैं AR रहमान।

फिल्म ताल से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। इसी के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौर भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में सब नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं

0: विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NCPI मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए। मॉनसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रेवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की। जांजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पौंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTech, MTech और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए। कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर सादर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 20वें ओवर में बिना विकेट खोए 124 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1005 पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा स्टमक फ्लू।

खेल दुनिया सेगमेंट में आप सुनेंगे फीफा 26 एक अवलोकन, वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भागीदारी, वार्ताकार होंगी माधुरी वर्मा। ताकत वतन की हमसे है सेगमेंट में आप सुनेंगे वित्तीय साक्षरता।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। ग्राम्यालोक में चर्चा का विषय होगा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बाजरा की खेती एक वरदान। संत बहादुर सिंह लोक धरोहरों सेगमेंट में आप जानेंगे परंपराओं, व्रतों, त्योहारों और मंदिरों के विषय में। साथ ही सुनेंगे लोकगीत, मंडी भाव एवं मौसम की जानकारी।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा हमारे बैंक धरोहर, हमारी धरोहर एवं मंगल पांडे। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा कल के लिए जल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सत्य प्रकाश। साथ ही सुनेंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स एवं नई खोजें।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय होगा आधुनिक हिंदी काव्य में पावस वर्णन। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुनीता सक्सेना। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने में। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे। रात्रि 10 आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये थे हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है फाल्गुनी पाठक, के देव चौधरी और करसन सागा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है लीला। संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम की अगली

गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है साकेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाजों में। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। संगीत दिया है साकेत टंडन और परंपरा टंडन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मुस्कुराते हुए अपने सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम तो बढ़ा रहे होंगे। वैसे एक बात बताइए, हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, करियर, दोस्तों और सोशल मीडिया की तो खूब बातें करते हैं, देर रात तक जाग भी लेते हैं, बाहर का कुछ खा भी लेते हैं और सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा

शरीर भी तो हमारा दोस्त है, वो भी हमें बार बार छोटे छोटे इशारे देता है, कभी थकान, कभी पेट दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार। अगर हम इन बातों को समय पर समझ लें तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। और आजकल तो मौसम भी बार बार बदल रहा है, कभी तेज धूप, कभी बारिश। आज ही आगरा में देख लीजिए, धूप का तो नामो निशान नहीं है। ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य का। और इसी से जुड़ा है आज का हमारा पहला विषय। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले मुझसे तो मिल लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त, आपकी साथी रोशनी शर्मा, और आप सुन रहे हैं यू आकाशवाणी आगरा का यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी। अगले कुछ समय तक हम साथ रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ नया जानेंगे, और हमेशा की तरह आपके लिए होगा ज्ञान भी और मुस्कान भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए, एक बार हम सब ऐसे घूमने जाएं और रास्ते में सब लोग चाट खा लें, ठंडा पानी भी पी लें। शुरुआत में तो सबको बहुत मजा आता है, लेकिन अगले दिन घर के दो लोगों के पेट में दर्द होने लगा, फिर वॉमिटिंग और लूज मोशन हो गए। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ये तो स्टमक फ्लू है। अब नाम सुनकर लगता है कि शायद ये वही फ्लू है जिसमें खांसी और जुकाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टमक फ्लू का मतलब है पेट और आंतों में संक्रमण हो जाना। ज्यादातर ये वायरस की वजह से होता है, गंदा पानी पीने से, ठीक से हाथ ना धोने से, या संक्रमित खाना खाने से ये जल्दी फैल सकता है। अगर घर में भी किसी व्यक्ति को हो जाए और साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो दूसरे लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चले कि ये स्टमक फ्लू है? अगर बार बार लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, हल्का बुखार या शरीर बहुत थका हुआ लगे तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये इसके सामान्य लक्षण हैं। ऐसे समय में शरीर से पानी भी बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए कमजोरी जल्दी महसूस होने लगती है। अब सबसे ज़रूरी बात, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सबसे पहले शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे। डॉक्टर की सलाह से ORS का घोल भी लिया जा सकता है। हल्का और ताज़ा खाना खाइए, जैसे खिचड़ी, दही या केला। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। और अगर बार बार वॉमिट हो रही हो, या बहुत तेज बुखार हो, या हालत ज़्यादा खराब लगे, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपनी मर्जी से दवा बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अब सोचा जाए कि इसके बचाव क्या हो सकते हैं, बचना भी तो ज़रूरी है, उस हालत तक पहुँचे ही क्यों। तो खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हमेशा साफ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए। बाहर का खुला हुआ खाना खाने से बचिए। फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर ही खाइए। छोटी छोटी आदतें ही हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। दोस्तों, हम अपने मोबाइल की बैटरी कम होते ही तुरंत चार्जर ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की बैटरी कम होने के संकेतों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य ही हर सपने की पहली सीढ़ी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी की दौड़ में हम पूरे मन से आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात जरूर समझ आई होगी। और आज तो संडे भी है, तो मनोरंजन का तो ठीक है, पर अपने खाने का जरूर ध्यान रखें। आज से मुझे याद आया कि आज तो महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की भी जयंती है। चलिए पूछ लेती हूँ आपसे इसी से संबंधित आज का सवाल। तो बताइए, 1977 की क्रांति में सबसे पहले मंगल पांडे ने किस स्थान पर अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था? आपका जवाब सिर्फ एक शब्द में होगा। सोचिए, याद कीजिए और जवाब तैयार रखिए। सही उत्तर हम कार्यक्रम के अंत में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने बात की कि अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो छोटी सी लापरवाही भी हमें बीमार कर सकती है। लेकिन जरा सोचिए, जिस वातावरण में हम रहते हैं, अगर वही स्वस्थ ना रहे तो क्या हम सच में स्वस्थ रह पाएंगे? साफ हवा, स्वच्छ पानी, हरे भरे पेड़, साफ सुथरा आसपास,

0: ये सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं, बल्कि हमारी अच्छी सेहत की भी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए अपने शरीर के साथ साथ अपने पर्यावरण का ख्याल रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को सबसे अच्छी तरह निभा सकते हैं हमारे युवा साथी, क्योंकि आज का छोटा सा प्रयास आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा कर रहे हैं आज हमारे साथ हैं माधुरी वर्मा। तो चलिए इनसे जानते हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भागीदारी के बारे में।
1: यूं तो हम जानते ही हैं कि वृक्ष हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। हमारे अनुकूल जीवन का आधार वृक्षों पर ही निर्भर है। वृक्ष हमारे जीवन को और भी अच्छा बनाने का हर सफल प्रयास करते हैं, परंतु हम ही दिन प्रतिदिन उन्हें अपनी लालसा और आधुनिक जीवन की पूर्ति हेतु काटते जा रहे हैं। यह सिर्फ वृक्षों का विनाश नहीं, अपितु हमारे खुद के जीवन का भी विनाश है। कहते हैं देश की भाग दौड़ युवाओं के कंधों पर आश्रित है, युवा ही देश का भविष्य है। तो युवाओं को ही वृक्ष संरक्षण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। यूं तो हम सभी जानते हैं कि आज की हर किसी की दिनचर्या बहुत ही व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं रहता, और शायद यही कारण है कि हम दिन प्रतिदिन मशीनीकरण की ओर हो रहे हैं। अपना थोड़ा समय बचाने के लिए खुद को मशीनों पर थोप देते हैं, अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तथा जो वृक्ष हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, मगर कभी भी हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करते, हमें सब कुछ सौंप देने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें भी अपने स्वार्थ के लिए हम काटकर उनसे दूरी बना रहे हैं, और इसी कारण हम अपने आज के साथ साथ अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। आज का युवा वर्ग यानी कि हम लोग जो हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, जिनकी सारी दिनचर्या उनके गैजेट्स के बिना पूरी नहीं होती, और गैजेट से हम हर प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं, पर अफसोस के साथ कहते हैं आज का युवा वर्ग यानी कि हम लोग जो हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, जिनकी सारी दिनचर्या उनके गैजेट्स के बिना पूरी नहीं होती है, उन गैजेट से हमें हर प्रकार की जानकारी मिलती है, पर अफसोस कि हम उन गैजेट्स का सही प्रयोग नहीं करते। उनके गलत प्रयोग के साथ साथ उनके प्रयोगों की अति से हम न जाने किन किन चीज़ों की बर्बादी का कारण बनते हैं। मगर अब जागरूकता बढ़ रही है और युवा वर्ग ही सबसे पहले अपना कदम बढ़ा रहे हैं, आगे आ रहे हैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, वो कर्तव्य जो हर इंसान का प्रकृति के प्रति बनता है। युवा वर्ग ना केवल वृक्ष लगाता है, अपितु उसकी देखभाल भी करता है। जब तक वह पौधा वृक्ष ना बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का प्रयोग युवा वर्ग सबसे अधिक करता है। इसी कारण युवाओं ने अब ऐसे गैजेट्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है जिनकी वाइब्स का नेचर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। युवाओं ने अब स्कूल व कॉलेज की साफ सफाई के साथ साथ वहां का वृक्षारोपण का कार्यभार भी संभाला हुआ है, और साथ ही वृक्षों के प्रति जागरूकता को लेकर कई अभियान भी चलाए हैं। साथ ही प्रकृति तथा जागरूकता से जुड़े सभी अभियानों में युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा वर्ग की अपने कर्तव्य तथा अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। बस अब युवा वर्ग को चाहिए कि कि वो अपनी

स्वागत है दोस्तों युववाणी में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रोशनी शर्मा। दोस्तों खेल की बात कर रहे थे हम। खेल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी के लिए सही तैयारी और सही रणनीति बहुत जरूरी होती है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी और हमारे पैसों पर भी लागू होती है। अगर कमाई और खर्च का हिसाब समझदारी से रखा जाए तो आगे का सफर आसान हो जाता है। वैसे भी आज का युवा सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक तो सीमित बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो कोई अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने का सपना देख रहा है। ऐसे में पैसों की सही समझ होना बहुत जरूरी है। और आज 19 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस भी है। इस मौके पर आइए जानते हैं एक ऐसी बैंकिंग सुविधा के बारे में जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा लेकिन शायद ठीक से समझा ना हो। आज बात करते हैं ऑटो डेबिट और ECS की। मान लीजिए हर महीने की 10 तारीख को आपको अपने मोबाइल का बिल भरना है या किसी लोन की किश्त जमा करनी है, लेकिन अगर आप भूल जाएं तो ऐसे में देर होने पर अतिरिक्त शुल्क भी लग सकती है। यही काम आता है ऑटो डेबिट। दोस्तों ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने अपने बैंक को पहले से अनुमति दे दी कि तय तारीख पर तय रकम अपने आप आपके खाते से कट जाए। आपको हर बार अलग से भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं ECS की, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की। इसे आप पैसों का एक ऐसा रास्ता समझिए जिससे एक साथ कई लोगों के खातों में पैसे भेजे जा सकते हैं और उनसे पैसे लिए जा सकते हैं। पहले इसका इस्तेमाल वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति या बिजली पानी के बिल जैसी सेवाओं के लिए बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल कई जगह इसकी जगह नई डिजिटल व्यवस्थाएं आ गई हैं। लेकिन ECS का नाम अब भी बैंकिंग में सुनने को मिल जाता है। दोस्तों एक बात का हमेशा याद रखिए, ऑटो डेबिट की सुविधा तभी चालू करें जब आपको पूरी जानकारी हो कि किस कंपनी या सेवा को आपने अनुमति दी है। अगर किसी सेवा की जरूरत खत्म हो जाए तो उसकी ऑटो डेबिट सुविधा भी बंद करवा दें और अपने बैंक खाते में इसका पैसा जरूर रखें कि तय तारीख पर भुगतान आसानी से हो जाए। याद रखिए, देखिए डिजिटल बैंकिंग तभी फायदेमंद है जब उसके साथ समझदारी भी हो। सुविधा का सही इस्तेमाल हमारा समय भी बचाता है और परेशानियों से दूर भी रखता है। तो दोस्तों जितना जरूरी अच्छी कमाई है उतना ही जरूरी उस पैसे का सही प्रबंधन भी है, क्योंकि समझदारी से लिया गया हर छोटा फैसला भविष्य को और मजबूत बनाता है। थोड़ी देर के लिए बातों को यहीं रोकते हैं और सुनते हैं आपका एक और पसंदीदा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, अब पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। तो दोस्तों, आज का सवाल था कि 1957 की क्रांति से पहले मंगल पांडे ने किस स्थान पर अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। इसका सही उत्तर है बीरकपुर। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बीरकपुर छावनी में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उनके साहस ने देश भर में स्वतंत्रता की चिंगारी को और तेज कर दिया। दोस्तों, आज हमने सेहत की बात करी, पर्यावरण की जिम्मेदारी समझी, फीफा विश्व कप के रोमांच को जाना और पैसों का सही इस्तेमाल भी जाना। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर काम आएंगी। समय हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

किसान भाइयों राम राम। कार्यक्रम ग्रामीलोक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे, करने आपसे खेती किसानी की बात, आपके हमारे हित की बात। किसान भाइयों, खेती किसानी में हमें कई सारी व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण समस्या है खेतों की रखवाली करना। क्योंकि जब हमारी फसल खेतों में खड़ी होती है तो ऐसे में छुट्टा आवारा पशु जैसे कि नील गाय, सुअर आदि के खेतों में घुस जाने से हमारी फसल खराब हो जाती है और हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई जो हमने अपनी फसल में लगाई है व्यर्थ चली जाती है, हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इससे बचाव के दो रास्ते हैं, या तो हमारे किसान सारे काम छोड़कर 24 घंटे अपने खेत

खेतों की रखवाली करें या फिर सरकार ने उसके लिए एक दूसरा बेहतर विकल्प दिया है जो है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य है सोलर फेंसिंग के माध्यम से अपने खेतों की सुरक्षा करना। यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले बिजली के तार जो कि बहुत ही कम वोल्टेज का झटका देते हैं, जिससे पशु को किसी भी तरह का गंभीर नुकसान भी ना पहुंचे लेकिन वो डरकर वहां से भाग जाए और आपके खेत में प्रवेश ना करे, दोबारा आपके खेत की तरफ आने से डरे। इसके लिए आपका बिजली का खर्चा ना बढ़े, उसके लिए इस फेंसिंग को यानी कि इन बिजली के तारों को सोलर पैनल से जोड़ा जाता है। सोलर पैनल आधारित बिजली के तार इनमें लगाए जाते हैं। इसके लिए सरकार अनुदान भी देती है यानी कि आर्थिक मदद भी देती है, जिससे कि आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। अब इससे फायदा ये होगा कि जब आपके खेतों में सोलर फेंसिंग होगी तो आपको अपने खेतों की सुरक्षा कम करनी पड़ेगी, आवारा पशुओं से बचाव करने पर कम ध्यान देना पड़ेगा, तो जो समय आपके पास बचता है उस समय में आप पशुपालन, डेयरी उद्योग, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे तमाम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि आप खेती किसानी के अलावा भी दो पैसे कमा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी रातों की नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। सीमांत और लघु किसानों को इस योजना में वरीयता दी जाती है ताकि उनको कमाई में ज्यादा अवसर दिए जा सकें, आर्थिक मदद देकर उनके खेती किसानी के अनुभव को आसान बनाया जा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा कमाई करवाई जा सके। इसके साथ ही आपके नाम खेत दर्ज होना चाहिए। कागजों में अगर हम बात करें तो आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाएं, खुद भी खेतों की रखवाली की जिम्मेदारी से मुक्त हों और दूसरों को भी इस योजना के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने खेतों की सुरक्षा, अपनी फसल की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो सकें, दो पैसे अतिरिक्त कमा सकें। इसी उम्मीद के साथ आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

0: कम समय में, कम पानी में और कम उर्वरकों में भी पैदा की जा सकने वाली फसल है। पौष्टिकता से भरपूर ये फसल सस्ती भोज्य सामग्री है जिसे हम कम लागत में भी उगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तो बाजरे का सेवन हमें हर तरह से फायदा पहुंचाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संत बहादुर सिंह की ये वार्ता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बाजरा की खेती एक वरदान विषय पर।
1: प्रिय किसान भाइयों, अन्न की फसलों में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से बाजरा का चौथा स्थान है। देश के कुल अन्न उत्पादन में लगभग 20% भाग बाजरे का है। बाजरा कम समय में तैयार होने वाली, सूखा सहन करने वाली एवं कम उर्वर भूमियों में उगने वाली फसल है, जो विकसित जड़ तंत्र द्वारा मृदा नमी शोषित करके वृद्धि कर लेती है। बाजरे की फसल में तीव्र प्रकाश संश्लेषण एवं संश्लेषित भोज्य पदार्थ का पत्तियों से दानों में दक्षतापूर्ण स्थानांतरण की प्रक्रिया इसे सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करती है। बाजरा शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करने वाली लगभग 40% ग्रामीण जनता का मुख्य भोजन एवं पशुओं के चारे का प्रमुख स्रोत है। इसे चपाती बनाने, चावल की भात पकाकर खाने के अतिरिक्त बालियों एवं दानों को भूनकर भी खाया जाता है। बाजरा एक पौष्टिक फसल है जो निर्धन लोगों तथा श्रमिकों को कम व्यय में समुचित ऊर्जा प्रदान करती है। भारत में कम उपजाऊ भूमियों में किसान बाजरा की फसल उगाना पसंद करता है, क्योंकि इसकी खेती में खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली दूसरी फसलों जैसे ज्वार, मक्का एवं धान की तुलना में बहुत कम मात्रा में उत्पादन लागत की आवश्यकता होती है। इसलिए बाजरे को गरीबों की फसल भी कहा जाता है। इसको पशुओं के चारे के लिए और दाने को पशुओं तथा मुर्गियों के आहार के लिए भी उपयोग किया जाता है। बाजरा का दाना मोटे अन्न की दूसरी फसलों विशेषकर ज्वार एवं मक्का की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। इसके दाने में 11.6% प्रोटीन, 5% वसा, 67% कार्बोहाइड्रेट एवं 2.7% खनिज लवण पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा का स्थान गेहूं, धान और मक्का के बाद आता है। कम वर्षा वाले स्थानों के लिए ये एक अच्छी फसल है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बाजरा की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली एवं कानपुर मंडलों में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान भाई अगर इन सब सघन पद्धतियों को अपना करके अपनी उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान भाई अच्छी प्रजातियों का चयन करके शुद्ध बीज को ही बोना चाहिए। बुआई के समय एवं क्षेत्र अनुकूलता के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संकुल ज्वार की प्रजातियां ICMB 155, WCC 75, PC 701, ICTP 8203, राज 171 एवं धन शक्ति हैं। संकर प्रजातियों में पूसा 322, पूसा 23, ICMH 451 एवं कावेरी अच्छी प्रजातियां हैं। किसान भाई बाजरा की अच्छी उपज के लिए हल्की, गहरे, अच्छे जल निकास की उर्वरक एवं कंकड़ पत्थर रहित भूमियां सर्वोत्तम होती है। बलुई दोमट भूमि बाजरे की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी नमी संरक्षण के संदर्भ में की जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में

में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए। इससे अधिक नमी संरक्षण के साथ पोषक तत्वों की निर्मुक्ति में सुविधा होती है। बीज के छोटा होने के कारण अधिक भुरभुरी, समतल एवं खरपतवार रहित खेत की तैयारी आवश्यक है। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 अन्य जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए। बाजरे की बुआई जुलाई के प्रारंभ से अगस्त के मध्य तक संपन्न कर लेना चाहिए। बाजरे की फसल की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए। बुआई

दो तीन अन्य जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए। बाजरे की बुआई जुलाई के प्रारंभ से अगस्त के मध्य तक संपन्न कर लेना चाहिए। बाजरे की फसल की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए। बुआई के 20-25 दिन बाद पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर नियत कर अतिरिक्त पौधों को निकाल देना चाहिए। बुआई के 20-25 दिन बाद पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर नियत कर अतिरिक्त पौधों को निकाल देना चाहिए। बाजरे के बीज छोटा होने तथा कम बीज दर प्रयोग किए जाने के कारण सुविधा हेतु बीज में बालू मिलाकर बुआई करना चाहिए। बाजरे की शुद्ध फसल की कतारों में बुआई हेतु 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। छिटकवा विधि से 6-7 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। किसान भाई ज्वार के बीज का उपचार करके बोना चाहिए। बीज उपचार के लिए 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम अथवा सेरेसान अथवा एग्रोसम जीएन से बीजोपचार करने से फफूंदी जनित रोगों से सुरक्षा हो जाती है। अर्गट के दानों को 20% नमक के घोल में डुबोकर निकाला जा सकता है, जिससे कि अर्गट की बीमारी से बच सकते हैं। ज्वार की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। यदि मृदा परीक्षण के परिणाम उपलब्ध ना हो तो संकर प्रजाति के लिए 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास तथा देसी प्रजातियों के लिए 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस एवं 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा बुआई से पहले बेसल ड्रेसिंग और शेष नत्रजन की आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में जब पौधे 25 से 30 दिन के हो जाने पर देना चाहिए। बाजरा की खेती में निराई गुड़ाई का अधिक महत्व है। निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे वह दूर तक फैलकर भोज्य पदार्थों को एकत्र कर पौधों को देती है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20-25 दिन बाद कर देना चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 40-45 दिन बाद करनी चाहिए। आजकल उत्पादन के आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग अधिक लोकप्रिय है। बाजरे में खरपतवार नियंत्रण हेतु एट्राजीन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मध्यम से भारी मृदाओं में तथा 1.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हल्की मृदा में बुआई के तुरंत बाद 2 दिनों में 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। हार्डी खरपतवारों जैसे कि बनपटा एवं रसभरी को नियंत्रित करने हेतु बुआई के 2 दिनों के अंदर एट्राजीन 1.5 किलोग्राम, पेंडीमिथाइलिन 30 ईसी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह से मिलाकर 500 लीटर पानी के साथ प्रयोग करने पर आशातीत परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्वार की फसल खरीफ के मौसम में उगाए जाने तथा सूखा सहन करने की पर्याप्त क्षमता के कारण बाजरा की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने की दशा में 1 या 2 सिंचाई फूल आने पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। बाजरा की विभिन्न किस्में 80 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। बाजरा की फसल की बालियों के पकने पर दाने कड़े हो जाते हैं तथा इसमें 20% से कम नमी पाई जाती है। फसल हसिया या दराती से काटी जाती है। बालियों की कटाई के उपरांत उन्हें खलियान में अच्छी प्रकार सुखाकर मड़ाई यंत्र अथवा दाएं चलाकर दाने को अलग कर लेना चाहिए।

0: ये बाजरे की देसी किस्मों से औसत रूप से 5-6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्मों से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाने की उपज सिंचित क्षेत्रों में प्राप्त हो जाती है। असिंचित क्षेत्रों में संकर किस्मों से 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त हो जाता है। बाजरे की फसल से 80 से 100 क्विंटल सूखा चारा तथा चारे की फसल से 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त हो जाता है। बाजरे की फसल में हरित बाली रोग के नियंत्रण के लिए उन्नतशील एवं संस्तुत प्रजातियों की ही बुआई करना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 25% WP अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। अर्गट रोग की रोकथाम के लिए संक्रमित फूलों में फफूंदी विकसित हो जाती है, जिनमें बाद में मधुरस निकलता है। प्रभावित दाने मनुष्यों एवं जानवरों के लिए हानिप्रद होते हैं।
1: किसान भाइयों, अभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बाजरा की खेती एक वरदान विषय पर डॉक्टर संत बहादुर सिंह को सुन रहे थे। लेते हैं एक अंतराल, जिसके बाद जानेंगे आगरा और उसके आसपास के मौसम का हाल।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: किसान भाइयों, आइए अब जान लेते हैं आगरा और उसके आसपास के मौसम का हाल। विगत 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेते हैं एक अंतराल।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए जान लेते हैं आगरा मंडी में अनाजों के भाव। गेहूं 2800 से 2850 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 4350 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 7350 से 7400 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 6400 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2000 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल। समय हो चला है मनोरंजन का, सुनते हैं सुनीता धाकड़ को ननद सोने की चिरैया रे।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। सभी किसान भाइयों को आपके रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे की राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं का कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और चलिए साथियों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न। साथियों, आपसे आज का प्रश्न है कि हमारे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इस प्रश्न का जवाब हम आपको चर्चा के अंत में देंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अब कर लेते हैं आज की खास चर्चा पर बात। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम अपने देश की धरोहरों की बात करते हैं या सुनते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसी अमूल्य संपत्ति का विचार आता है जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक संभाल कर रखना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के बैंक भी ऐसी ही एक राष्ट्रीय धरोहर हैं, जिनका हम अपने जीवन में लाभ ले पाते हैं। साथियों, बैंक धन जमा करने का स्थान तो है ही, साथ ही ये देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि के मजबूत स्तंभ भी होती हैं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के बैंकों की, क्योंकि आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, जो कि आज ही के दिन यानी कि 19 जुलाई को मनाया जाता है।

इसके इतिहास की बात करें तो भारत के आर्थिक इतिहास में 19 जुलाई 1969 का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाद में 1980 में 6 और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका उद्देश्य केवल बैंक चलाना नहीं था बल्कि बैंकिंग सेवाओं को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना था। क्योंकि तो साथियों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में लोग अपने कमाए हुए धन को अपने घरों में या ज़मीन में छिपा कर रखते थे, और तब धन की चोरी और आग लगने जैसी घटना का खतरा बना रहता था। लेकिन बाद में बैंकों की स्थापना के बाद लोगों को अपने धन को रखने के लिए सुरक्षा मिली, जहां उनका धन बिना किसी खतरे के सुरक्षित रखा जाने लगा। और तब से साथियों, बैंक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई, जो कि हमारे धन को सुरक्षित रखने के साथ उस पर ब्याज तो देते ही हैं, साथ ही शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार और घर बनाने जैसे अनेक कामों में हमें सहायता प्रदान करते हैं। आज किसान भाई खेती के लिए, विद्यार्थी शिक्षा के लिए और युवा स्वरोजगार व व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों के इस तरह के सहयोग से नए उद्योग तो स्थापित होते ही हैं, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और देश का विकास भी होता है। और साथियों, आधुनिक युग की बात करें तो आज के डिजिटल युग में तो बैंकिंग सुविधा पहले से कई और अधिक आसान हो गई है। आज हमें अपने हर एक छोटे बड़े काम के लिए बैंक में जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई आज मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, ATM और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं बैंकिंग को जो है घर घर तक पहुंचा दिया है। आज कुछ ही सेकंडों में घर बैठे हम देश के किसी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं, अपने बिल वगैरह भर सकते हैं, इसी के साथ कई सारे काम भी कर सकते हैं। सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि व अन्य सरकारी सहायता भी सीधे लाभार्थियों के बैंक में जमा होती है। इससे पारदर्शिता तो बढ़ती है, साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। तो साथियों, इस तरह बैंक केवल आर्थिक संस्थान नहीं बल्कि देश की प्रगति के नींव हैं। जितने मजबूत बैंक होते हैं उतने ही मजबूत हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी होती है। साथियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश के हर वर्ग को आर्थिक विकास से जोड़ा है, इसलिए हम सभी को भी बैंकिंग व्यवस्था पर पूरा भरोसा और उसका सम्मान करना चाहिए और अपने भारत देश को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के अंत में बता देते हैं आपको आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, आज का प्रश्न था कि हमारे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, जिसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि देश के संपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने, नोट जारी करने और देश की मौद्रिक नीति तय करने का कार्य करती है। तो साथियों, बातचीत आगे और भी होंगी, फिलहाल वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य और गीत संगीत की दुनिया के एक ऐसे महान लोकप्रिय कवि की जिनकी रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। ये साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत गोपालदास नीरज जी की, जिनकी आज के दिन हम सभी पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जन्मे गोपालदास नीरज जी ने बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष, संवेदना और जीवन के अनुभवों ने उनकी लेखनी को और भी समृद्ध बना दिया। साथ ही नीरज जी एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने हिंदी कविता और हिंदी फिल्म संगीत के बीच एक सुंदर पुल का निर्माण किया। उनकी कविताओं में प्रेम, करुणा, देशभक्ति और मानवता जीवन का गहरा दर्शन भी था, जिससे उनके लिखे गए शब्द सीधे हृदय को स्पर्श करते थे, जिसके कारण उन्हें कवि सम्मेलनों में महान सफलता हासिल हुई। कवि सम्मेलनों में अपार सफलता के बाद उन्हें मुंबई के फिल्म जगत में गीत लिखने का निमंत्रण भी मिला और वहां उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्म नई

0: की नई फसल से उनकी फिल्मी गीतकार की यात्रा शुरू हुई। कारवा गुजर गया गुवार देखते रहे, मेरा नाम जोकर फिल्म के गीत, ए भाई ज़रा देख के चल और शर्मीली के गीतों ने उन्हें दुनिया में अमर बना दिया, जिसके चलते उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत लिखने के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। साथ ही नीरज जी का मानना था कि कविता केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। उनकी रचनाएं हमें प्रेम, सद्भाव, सत्य, नैतिकता और मानवता का संदेश भी देती हैं। उन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उनके उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया। और यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं था साथियों, बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य का सम्मान था। 19 जुलाई 2018 को गोपाल दास नीरज जी इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई कविताएं और गीतों के माध्यम से वे आज भी हमारे बीच सदैव जीवित हैं। साथियों, जिस तरह से आज की ये तारीख एक महान कवि को श्रद्धांजलि देने की है, उसी तरह ये दिन भी भारत के उस महान क्रांतिकारी को याद करने का भी है जिन्होंने अंग्रेज शासन के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाकर पूरे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे की। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्मे मंगल पांडे बचपन से ही साहसी, स्वाभिमानी और सच्चे देशभक्त थे, जो कि आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही बने। साथ ही बात सन 1857 की है जब अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफलें सैनिकों को दी। तब इन राइफलों के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की बात सामने आई, जिससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि उन कारतूसों का उपयोग करने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था, जिसके चलते मंगल पांडे ने इसका दृढ़ता से विरोध किया और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का साहसपूर्वक सामना किया। साथ ही इस घटना ने पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी फैला दी और यही घटना आगे चलकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। अंग्रेज सरकार की हुकूमत के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। साथ ही इस तरह का उनका ये बलिदान हम सब देशवासियों को ये संदेश दे गया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान भी छोटा होता है। आज हम सब इस स्वतंत्र भारत में जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें मंगल पांडे जैसे असंख्य वीरों के बलिदानों की सुगंध समाई हुई है। इसलिए हम सबको भी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश के प्रति ईमानदार, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए जल प्रकृति का सबसे बड़ा अनमोल उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार ही जल है। बिना जल के ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है और ना ही पशु पक्षी और ना ही पेड़ पौधे। और इसीलिए कहा भी गया है कि जल है तो कल है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात

0: आज हम जब जल का जितना उपयोग कर रहे हैं उससे कहीं अधिक उसकी बर्बादी भी कर रहे हैं, जिसे आज रोकना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो साथियों, किस तरह से जल की अंधाधुंध होती इस बर्बादी को रोका जा सकता है और किस तरह से जल का हम संचय कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की वार्ता के माध्यम से। वार्ता का नाम है कल के लिए जल, जिसके वार्ताकार हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश।
1: कल के लिए जल। हमारे लिए जल बहुत ही अमूल्य है। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल का प्रमुख स्थान है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो जल जीवनदायिनी है। हमारे लिए जल की एक एक बूंद कीमती है। हम सबको मिलकर जल की बर्बादी को रोकने के विषय में विचार करना चाहिए तथा जल संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो देर हो जाएगी। बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए हमें जगह जगह टैंक बनाने होंगे, जिसमें हम पानी एकत्र कर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों के नलों के पानी की बर्बादी रोकने के लिए पानी की निकासी, अपने किचन गार्डन में लगे पेड़ पौधों के लिए उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। स्नानागार एवं वाश बेसिन का पानी टॉयलेट टैंक में जाना चाहिए ताकि इसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। घरों एवं कार्यालयों में लगे एसी के पानी को एकत्र कर इन्वर्टर की बैटरी में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब हमें पानी बचाने के लिए एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। हम जहां भी जल बर्बाद होते देखें, अविलंब जल की बर्बादी रोकने के प्रयास करने चाहिए। शासन द्वारा भी इसे रोकने के लिए समय समय पर कदम उठाए जाते हैं। शहरों में एक ही स्थान के आसपास समर पंप लगाने के बजाय हमें समूह में समर पंप लगाने चाहिए, जिससे एक ही स्थान पर जल के स्तर में कमी न आए और जल की बर्बादी पर भी रोक लग सके। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम अभी भी नहीं जागे तो जल की कीमत पहुंच से बाहर हो जाएगी और समाज में जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। जल की कमी का प्रभाव न केवल मानव पर पड़ता है बल्कि पशु पक्षियों एवं खेती पर भी पड़ता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कमी से देश जूझने लगेगा। जरा आप सोचिए, जल की कमी के कारण कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जीवन का संकट गहरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा जल संरक्षण हेतु कदम नहीं उठाए जा रहे हों, लेकिन उसे लागू करने में जनता के सहयोग की अहम भूमिका है। जैसे हमारे पुराने तालाबों को हम समाप्त करते जा रहे हैं, जिसमें जल का संचयन होना था वहाँ हमने आवास बना लिए हैं और धीरे धीरे तालाबों की जगह कब्जे होते जा रहे हैं। लेकिन हम यह भूल गए हैं कि यदि इसी तरह तालाबों को नष्ट करते गए तो एक तरह से यह वही होगा जैसे जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हों। संपूर्ण देश में माह जुलाई एवं अगस्त में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होती होगी कि अमुक नदी अपने पूर्ण उफान पर है तथा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। उस नदी के किनारे रहने वाले मनुष्यों एवं उनके मवेशियों को अन्यत्र विस्थापित किया गया है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, कभी आपने इस पर विचार किया? इसका मुख्य कारण हम जल को वृहद स्तर पर संचित नहीं कर पा रहे हैं और जिस जल को हम जीवनदायिनी कहते हैं वो समुद्र में चला जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता। हमें बारिश के पानी को संचित करने के लिए तालाबों के निर्माण कराने की अति आवश्यकता है। छोटी छोटी बचत बड़ी बचत को जन्म देती है, इसीलिए शहरों में छत के पानी को एकत्र कर प्रयोग में लाने की आदत बनानी ही होगी, जो हम सबका दायित्व है। हम सदैव अपने अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जीवन के लिए मानव त्राह त्राह करता नजर आएगा और देश को भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। हमें प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित करने के लिए शासन व प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हादसों को रोकने के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पूर्व ही मूसलाधार बारिश और बाढ़ से उत्तर भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भारी तबाही हुई है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड

0: हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सभी प्रमुख नदियां उफान पर बह रही थीं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना पानी सिर से ऊपर निकल जाएगा। पहाड़ों पर बारिश होने के कारण पहाड़ी नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ता है तथा बहाव की रफ्तार भी तेज होने के कारण मैदानी नदियों में जल स्तर की वृद्धि होने लगती है और धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदियों के किनारे उन स्थानों पर जहां मकान निचले स्तर पर बने होते हैं, वहां बाढ़ से प्रभावित होने की अधिक संभावना रहती है। प्रतिवर्ष बाढ़ की भयावह स्थिति से निपटने के लिए शासन व प्रशासन को तैयारियां करनी पड़ती हैं। यदि हम इस जल के संचयन हेतु जगह जगह पर झीलों व तालाबों का निर्माण करें तो निश्चित रूप से हम बाढ़ के द्वारा होने वाली तबाही से बच सकते हैं। अधिक संख्या में झीलों के निर्माण से भूगर्भ में भी जल स्तर की निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इस प्रकार जीवनदायिनी जल को आसानी से उपयोग हेतु संचित किया जा सकेगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। हमारी सरकारों को भी तालाब व झील के निर्माण करने वालों को आर्थिक मदद देने की आवश्यकता है, जिससे वे अनवरत प्रेरित होते रहें और समाज में जल संचयन के महत्व को बढ़ावा मिले। जल को मुख्यतः दो तरह से बचाया जा सकता है, एक तो जल की बर्बादी पर रोक लगाकर, दूसरा जल का उचित भंडारण करके। यदि जल का भंडारण पर्याप्त होगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में हम सबसे पहले जल की तलाश करते हैं। यदि किसी ग्रह पर जल की संभावना मिलती है तो हम कहने लगते हैं कि अमुक ग्रह पर जीवन संभव है। हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक गाँव के बाहर तालाब बनाए थे, जिन्हें वे स्थानीय भाषा में पोखर भी कहते थे, लेकिन हमने लालच में आकर उन पोखरों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया या उनको बहुत छोटा कर दिया, जिससे पर्याप्त जल एकत्र नहीं हो पाता है। अब इन पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जिससे न सिर्फ जल भंडारण की क्षमता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर भारतीयों को अपनी पूर्ण लगन व मनोयोग के साथ अपनी अपनी क्षमता अनुसार देश के लिए योगदान करना चाहिए, जिससे हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकें। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान होता है, फिर भी हम अनजान बने रहते हैं और यह समस्या प्रतिवर्ष भयावह रूप धारण करती चली जा रही है। अब हमें न सिर्फ तालाब व झीलों का निर्माण करना होगा, बल्कि जिस क्षेत्र में जल की अधिक कमी होती है वहाँ इन नदियों की शाखाएं भी बढ़ाने की जरूरत है और बैराज की संख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ताकि हमारे देश में वर्षा के जल का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। अब हम सबको जल के उपयोग व बर्बादी को रोकने के लिए प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की ओर ध्यान देना ही होगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता कल के लिए जल, जिसके वार्ताकार थे डॉक्टर सत्यप्रकाश। और साथियों, इस वार्ता में बात चल रही थी जल को बचाने की, उसके संचय की, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। और ऐसे में इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों का विकास भी किया है, जिसमें ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर तकनीक खेती किसानी करने वालों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जी हाँ साथियों, इस तकनीक में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है और इस तरह से पानी की बर्बादी भी कम होती है। इसी के साथ वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे आधुनिक फिल्टर और भंडारण सिस्टम विकसित किए गए हैं, जिनमें वर्षा का पानी साफ करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो साथियों, वैज्ञानिकों की इस लाभदायक खोजों के बाद अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत। साथियों, सेहत टिप्स में हम आज बात करने वाले हैं मखाने की, जिसे कमलगट्टा के नाम से भी जानते हैं। इसमें साथियों कई सारे प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कई सारे भरपूर जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वो होते हैं, इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक मात्रा में माना जाता है। साथियों, शरीर में हड्डियों की कमजोरी आने पर उनको मजबूती देने के लिए मखाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए आप 8 से 10 मखाने गुनगुने दूध के साथ रोज ले सकते हैं और इस तरह से मखाने के सेवन से हड्डियों में आई कैल्शियम की जो कमी है

तो दूर होगी, साथ ही हड्डियां भी मजबूत बनेंगी। इसी के साथ ज़्यादा कमजोरी और थकान होने पर भी आप मखानों का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप 8 से 10 मखानों को घी में हल्का सा भून लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सुबह शाम खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर में कमजोरी और थकावट दूर होकर के आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। तो साथियों, ये थी आज की सेहत टिप्स, और अब बारी है आपके मनोरंजन की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टोरी की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार कुछ ही क्षणों में।
1: करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे

0: बात सुने।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल कमेंस टुमारो एंड कंटिन्यू टिल द 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ड्यूरिंग द सेशन सेवरल इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस आर शेड्यूल्ड टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशन एंड पासेज। On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting with the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
4: Today the entire opposition, all parties have all walked out, all party meeting in protest because NCPI, which is an unrecognized party, these so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
2: The Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160 kilometer long Rameshwaram

0: Ishwar Paradeep Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. It will pass through Khurda, Puri, Kendrapara and Jagat Singhpur districts, providing seamless connectivity between key cultural, religious, tourism and economic destinations along the state's coastline. The ministry said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity. Abu Dhabi's Zayed International Airport will increase direct flights to 22 Indian cities in August from the current 17, reflecting strong demand from one of its fastest growing tourism markets. Abu Dhabi Airport's Chief Commercial Officer, Carsten Norden, said that at an event marking Air India Express's launch of new services. The Tata Group-owned airline this week started flights to Abu Dhabi from Navi Mumbai, Indore and Lucknow and will add Guwahati next month. The United States military launched airstrikes on Iran today, targeting the country's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, in what it described as a retaliation for the killing of American troops in Jordan. On the other hand, IRGC has said it has intercepted and shot down the United States MQ-9 drone in Iran's Ahvaz. Commander of the Central Khatam al-Anbiya headquarters, Major General Ali Abdullahi, has warned that Iran's armed forces will give a devastating response to the US for any act of aggression. Prime Minister Narendra Modi has congratulated PV Sindhu on winning women's singles title of the Japan Open 2026. He described the win as a historic feat for Indian badminton and said that her determination and exceptional skills were on full display throughout the tournament. Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup 2026 as defending champions Argentina take on Spain at New Jersey tonight. The match kicks off 12:30 a.m. Indian time. Argentina is one of the most successful teams in FIFA World Cup history, having won the title three times. Messi's team will be looking to become the first team to successfully defend the FIFA World Cup title after Brazil in 1958 and 1962. On the other hand, Spain will be aiming to lift their second FIFA World Cup trophy after 2010. The series deciding third ODI between India and England is being played at Lord's in London, electing to bat first. England were 324 for 3 in 46.5 overs when reports last came in. Players from both the team were wearing black armbands and observed a minute's silence to honour the legendary West Indies all-rounder Sir Garfield Sobers, who recently passed away. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय है आधुनिक हिंदी काव्य में पावस वर्णन। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनीता सक्सेना।
2: भारतीय संस्कृति एवं उसके जनजीवन में ऋतुओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विश्व में केवल हमारा देश ही ऐसा है जहां बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर जैसी 6 ऋतुएं क्रमशः आती हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा क्रम देखने को नहीं मिलता है। इन ऋतुओं में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा को देव ऋतु कहा जाता है, जबकि शरद, हेमंत व शिशिर को पितृ ऋतु। उत्तर की ओर जब सूर्य रहता है तो ऋतुएं देवों में गिनी जाती हैं। इन ऋतुओं में देव कार्य करना उत्तम रहता है और दक्षिण की ओर सूर्य की गति होने पर जब दक्षिणायन होता है तब मृत पितरों के प्रति यज्ञ दान व श्राद्ध क्रम के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। भारतीय जनमानस व उसके साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बसंत और पावस 2 ऋतुएं रही हैं। बसंत को यदि ऋतुराज कहा जाता है तो पावस को ऋतुओं की रानी बताया गया है। पावस के आते ही पूरा परिवेश उमंग और उल्लास में भर जाता है। यह सुख और आनंद हमारे साहित्य और संस्कृति में असंख्य रूपों में व्यक्त हुआ है। घाघ और भड्डरी जैसे लोक कवियों ने वर्षा संबंधी गतिविधियों पर अनेक उक्तियां रची हैं। संगीत में यदि वर्षा को समर्पित मेघ मल्लार जैसे राग और रागनियां हैं।

तो लोक साहित्य में आला एक ऐसा काव्य रूप है जिसका संबंध पावस ऋतु से ही है। संस्कृत साहित्य में कालिदास का वर्षा ऋतु चित्रण अप्रीतम है, वहाँ वाल्मीकि भी पीछे नहीं रहे। कवि विद्यापति ने रूपात्मक सौंदर्य का आभास दिया है। इनका बारहमासा भी अन्य कवियों के बारहमासा के समान है। भक्ति काल में तुलसी, सूर, जायसी आदि कवियों ने पावस ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के मनोभावों के द्वारा वर्षा का जो वर्णन किया है वह अद्भुत है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। कवि रहीमदास भी कहते हैं कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन। अर्थात वर्षा ऋतु आते ही मेंढकों की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है, तब कोयल ये सोचकर खामोश हो जाती है कि उसकी आवाज कौन सुनेगा। इसी प्रकार छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत व महादेवी वर्मा ने भी पावस को आत्मसात कर लिया है। महादेवी वर्मा का तो परिचय ही नीर भरी दुख की बदली के रूप में दिया जाता है। इनकी प्रकृति चित्रण सूक्ष्म दृष्टि की सराहना करते ही बनती है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने पावस का चित्रण करते हुए लिखा है, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सगन बरसते। इसी प्रकार वे अपने आंसू काव्य में लिखते हैं, झंझा झगोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में वर्षा की अनेक छवियां हैं। वे गीतिका काव्य संग्रह में संकलित पावस कविता में लिखते हैं, बादल में आए जीवन घन, अपलक नयन सुवास यौवन नव। इस प्रकार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने गुंजन काव्य संग्रह में संकलित पावस कविता में वर्षा का सुंदर चित्रण किया है। बरसो तुम सुख वन सुषमा वन, बरसो जग जीवन के घन, दिश दिश और पल पल में बरसो संस्कृति के सावन। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रकृति चित्रण की अपनी एक विशेषता रही है। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास काव्यों में प्रकृति सौंदर्य के अनेक अनुपम चित्र हैं। वे प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग में पावस का मनोरम चित्रण करते हुए कहते हैं, सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते, विलसती बहुधा जिनमें रही, छवि वती उड़ती वंक मलिका। कवि श्री गोपाल खंडेलवाल की कविता में वर्षा की एक एक क्रमक गति का मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और इसकी प्रभावशीलता से मानव मनोभावों में किस प्रकार परिवर्तन होता है द्रष्टव्य है। पानी बरसकर खुल गया, जैसे हृदय ही धुल गया, ज्यों ही उठी काली घटा, मन का अंधेरा सा कटा। डॉक्टर नारायण मिश्र ने वर्षा को खुशहाली लाने वाली, खेतों में हरियाली लाने वाली ऋतु बताकर इसके प्रति अपनी रचना में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तुम धन्य हो वर्षा रानी, मृत प्राणियों को देते पानी, जग में तुम खुशहाली लाती, खेतों में हरियाली लाती, संग अनेक सहेली लाती, तपते जग में शीतलता लाती। प्रगतिशील कवि बाबा नागार्जुन ने मेघ घन कुरंग बादल को घेरते देखा है आदि कविताओं में वर्षा का सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्य संग्रह युगधारा की कविता बादल को घेरते देखा है एक सुंदर कविता है। कवि ने हिमालय क्षेत्र की मानसरोवर झील के आसपास बरसते बादलों के दृश्य का मनोरम चित्रांकन किया है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। प्रयोगवादी नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति के अनेक दृश्यों और स्थितियों का अनेक प्रकार से अंकन किया है। उनके काव्य संग्रह बाबरा अहेरी की पावस कविता वर्षा पर ही आधारित है। वे कहते हैं, ये मेघ

साहसिक सेनानी ये तरल वाष्प से लदे हुए। इसी प्रकार कवि गिरजा कुमार माथुर को पावस का झमाझम मौसम सुहावना लगता है। इस मौसम में उनके अधरों से कविता उमड़ती है, उन्हें रंगों में सुगंध और सुगंध में रंग दिखाई पड़ता है। वे लिखते हैं, मन कितना कच्चा हो जाता है सावन में, बूंदों की अटखेलियां, पकौड़ों की भीनी खुशबू। आधुनिक काव्य की गीत, नवगीत, हाइकू, गजल, दोहा, मुक्तक, हर विधा में पावस ऋतु का वर्णन देखने को मिलता है। सारतः आधुनिक हिंदी काव्य में पावस का विविधतापूर्ण और मनोहारी चित्रण ये दर्शाता है कि वर्षा प्रकृति के श्रृंगार

0: दर्शाता है कि वर्षा प्रकृति के श्रृंगार की ऋतु है जो अप्रीतम आनंद का संचार करती है। इस ऋतु ने न केवल साहित्य व साहित्यकारों को अपितु धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव छोड़ा है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय था आधुनिक हिंदी काव्य में पावस वर्णन। वार्ताकार थी डॉक्टर सुनीता सक्सेना। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
0: पर दादी आपके नाम?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: चुप चुप बोलो क्या।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण। आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी और जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खटके ने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। राज्य के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए यूपी को ऐसा राज्य बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रायः आपदा व जनधन की व्यापक हानि के बाद हम लोग सक्रिय होते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी व जागरूकता जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर ला सकती है।
5: आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन के गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
4: नवीन मुख्यालय भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक

0: प्रमुखों को आज प्रशासक बना दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। राज्य सरकार ने आज 826 ब्लॉक प्रमुखों की प्रशासक के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव डीएम के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक में शामिल करने पर विरोध जताया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में आगामी 22 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
3: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले के बीच अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम न्यासी बैठक बुलाई गई है। बैठक के एजेंडे में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा और ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल है। वहीं दूसरी ओर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रस्ट के पुनर्गठन, वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व और मंदिर की पूजा व्यवस्था रामानंदी परंपरा के अनुसार संचालित करने समेत कई मांगे उठाई हैं। अब इस मामले पर सभी की निगाहें 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं। श्री खडसे ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा, समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। ये शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने और नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए आज सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री

0: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश वासियों को मिला है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों और तराई क्षेत्रों में ये क्रम आगामी दो दिनों तक जारी रहेगा।
1: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला आने वाले अगले 24 घंटे में भी रहेगा और आने वाले अगले 3 दिनों तक। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भारी वर्षा की भी संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण। आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी और जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को उषा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कुशल ही होंगे। इस उमस भरी गर्मी में बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कोशिश करें ताज़ा खाना खाएं, बाहर के खाने से बचें, गरिष्ठ भोजन कम से कम खाएं, कुछ सावधानियां रखेंगे तो मैं परिवार के कुशल पूर्वक रहेंगे। साथियों, ये तो रहे हमारे और आपके हालचाल। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक वीर हुए जिन्होंने अपने साहस, त्याग और बलिदान से देशवासियों के हृदय में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की। ऐसे महान क्रांतिकारियों में मंगल पांडे का नाम अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उन्हें 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का प्रथम वीर सेनानी माना जाता है। हर वर्ष 19 जुलाई को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन

देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा उनके अद्वितीय साहस और देश प्रेम को याद किया जाता है। साथियों, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। बचपन से ही वे साहसी, स्वाभिमानी और देशभक्त स्वभाव के थे। युवावस्था में वे अंग्रेजों की सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। साथियों, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। भारतीय सैनिकों को कम वेतन, अपमान और अन्याय का सामना करना पड़ता था। इसी बीच अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल का उपयोग शुरू किया। इन राइफलों के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की बात कही गई। कारतूस का उपयोग करने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति भारी असंतोष फैल गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेजों अधिकारियों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का डटकर सामना किया और अपने साथियों को भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया। यद्यपि उस समय अधिकांश सैनिक उनका साथ देने से डर गए, फिर भी मंगल पांडे अपने निर्णय पर अडिग रहे। उनका यह साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा बना। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की लहर पैदा कर दी और कुछ ही समय बाद 1857 का महान विद्रोह पूरे देश में फैल गया। साथियों, इससे आगे की बात हम करेंगे इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद।

डग डग डग डग डग डग डग डग लर्जे धरती लर्जे काल के रथ की बजी घंटियां दसों दिशा में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी मंगल पांडे के विषय में, जिनकी आज जयंती है। मंगल पांडे का योगदान केवल एक सैनिक के रूप में नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जगाने का कार्य किया। उनके विद्रोह ने ये संदेश दिया कि अन्याय और गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। भारत में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। साथियों, मंगल पांडे जयंती हमें उनके साहस, देशभक्ति और बलिदान की याद दिलाती है। इस अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों में भाषण, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े आयोजन किए जाते हैं। विद्यार्थियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे अमर नायक हैं जिनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। उनका साहस, त्याग और देशभक्ति आज भी प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। हमें उनके आदर्शों का पालन करते हुए अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

0: आज के समय में भी मंगल पांडे का जीवन युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति का साहस पूरे राष्ट्र में परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। हमें उनके जीवन से ईमानदारी, निडरता, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण की भावना सीखनी चाहिए। आज देश की सेवा केवल युद्ध लड़कर ही नहीं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के माध्यम से भी की जा सकती है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, तो यही मंगल पांडे के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बल्ली कित्थे है?

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न करने की उषा सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत है यशुदास की आवाज में, फिल्म का नाम है टूटे खिलौने। शब्द रचना है कैफे आजमी की, संगीत दिया है वप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है गंगा की सौगंध। शब्द रचना है अनजान का और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। शब्द

आज का अर्जुन फिल्म से शब्द रचना है अनजान की, संगीत दिया है वप्पी लहरी ने, और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है समुंदर। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है संगम होके रहेगा। शब्द रचना है सावन कुमार और संतोष आनंद की। संगीत दिया है आनंद मिलंद ने।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्र के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले।

0: इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, क्योंकि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो, एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility, but in our house it has become regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
4: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
5: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंध

0: बंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
3: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लुटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक

0: मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the business advisory committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that this entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
4: Today the entire opposition, all parties have all walked out, all party meeting in protest because NCPI, which is an unrecognized party, these so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members

0: boat race. Meanwhile, several Indian cities, states including Kerala, Manipur, Mizoram and Meghalaya have declared holiday in schools and higher educational institutions for tomorrow after demands by students and political leaders. They cited the late night schedule of the finals and concerns over attendance and travel after the game. And in men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, Shubman Gill led Indian side with 93 for no loss in 16 overs when reports last came in. Opting to bat, England scored 387 runs at the loss of 3 wickets in 50 overs. Players from both the team were wearing black armbands and observed a minute silence to honour the legendary West Indies all-rounder Sir Garfield Sobers, who recently passed away. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. Urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre-long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claims 9 lives in Nagaland. U.S. military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, hosts England set 388 runs target for India in the third and the final ODI at Lord's. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले, जो कल से शुरू हो रहा है, कल कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुश उसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज ओडिशा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जाने चली गई। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान के पासदारा ने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी ओडीआई में मेजबान इंग्लैंड ने भारत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास कल से शुरू हो जाएगा, जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिन पर बहस मुबहसा होगा। मॉनसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवु श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के, एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
2: कोई पार्टी या कोई

0: मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामाधिकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा

0: राज्यसभा में ऑपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदु किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बाइकआउट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने ऑपोजिशन पार्टियों की स्कूल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी बीएसी की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहसो मुबाहसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रिवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च जुलूस मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ओडिशा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकामात के माबैन बिला रुकावट राबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस नई शाहराह से मकामी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे, क्योंकि इस शाहराह की वजह से होटलों, होम स्टेज, रेस्तरां, दस्तकारी की मार्केट्स और सियाहत पर मबनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से 9 इकतसादी मकामात और 5 लॉजिस्टिक्स के मराकज में बाहम रابطہ होगा, जिससे उड़ीसा के इकतसादी नेटवर्क को इस्तेहकाम हासिल होगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से रजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और खराब सड़क के बावजूद मुतअद्दिद इदारों पर मुश्तमिल एजेंसियां राहत और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और अफसरान को मुतासिरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे को मौखिर करके आज दोपहर जम्मू वापस पहुंच गए। नदियों की दुगियानी की वजह से दर्जनों गाड़ियां या तो पानी में बह गईं या गरकाब हो गईं। मकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव की टीमें मुतासिरा कुनबों को महफूज मकाम पर ले जाने और नुकसान का तखमीना लगाने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड में आज से बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जाने भी जाये हुई है। मोन जिले में अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 9 अफराद हलाक हो गए और बहुत से घर बह गए। नागालैंड की कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली रियासती अथॉरिटी के जॉइंट सीईओ जॉनी रंगमे ने आकाशवाणी के हमारे नामनिगार को बताया कि 3 खवातीन और 1 शख्स समेत 4 मुतासरीन की लाशें बरामद कर ली गई हैं और बकिया 5 की तलाश की जा रही है। नगीनी पोड़ा में 4 अफराद को, जो मलबे में दबकर शदीद जख्मी हो गए थे, बचा लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि गैर मुतअद्दी अमराज मुल्क में सेहत आम्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निमटने के लिए अवामी सतह पर एक तहरीक शुरू करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे के साबिक सीनियर मुशीर डॉक्टर अखिलेश गुप्ता की तसनीफ अनब्रोकन माई बैटल विद कैंसर एंड द विल टू लीड के इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मोल्दोवा और रोमानिया के सफीर डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने कहा है कि सदर द्रौपदी मुर्मू का इन दो मुल्कों का दौरा तारीखी नौयत का होगा। डॉक्टर महापात्रा

मात्रा ने प्रसार भारती से बात करते हुए कहा कि भारत और मोल्दोवा के दरमियान गर्मजोशी पर मबनी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दौरा एक अहम और तारीखी संगे मील साबित होगा जिससे दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात एक वसी तर शराकतदारी में बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कद्र शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के बाद दोतरफा इकतसादी शराकत दारी से आइंदा बरसों में ये ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सद्र जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तीन मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वो मालदोवा पहुंचेंगी। ये किसी भी भारतीय सदर का मालदोवा का पहला सरकारी दौरा होगा। इस दौरान सद्र जमहूरिया मालदोवा की सदर माई सैंडी से मुलाकात करेंगी और वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मालदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो मोल्दोवा भारत बालेमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से मुलाकात, एक कारोबारी फोरम से खिताब और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। दौरे के दूसरे मरहले में मोहतरमा मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक शिमाली मकदूनिया में रहेंगी, जबकि अपने दौरे के आखिरी मरहले में वो 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया का दौरा करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले को मनमाना करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मिनी पुष्करणा का ने कहा कि वांगचुक को फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के किसी फौरी हुक्म की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स उनकी हालत पर करीबी नजर रख रहे हैं और उनका इलाज मुआवजा उनकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। अदालत वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमू की एक दरख्वास्त की समाहत कर रही थी जिसमें उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। अमरीकी फौज ने आज ईरान पर फजाई हमले किए जिनमें ईरान के नीम फौजी दस्ते सिपाहे पासदारा ने इनकलाब IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि यह कार्रवाई उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमलों में ईरान की साहिली निगरानी, फजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि पहली मर्तबा उसकी कार्रवाई का खसूसी निशाना IRGC थी जो ईरान के मजहबी निजाम में एक ताकतवर इदारा है और मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल रखती है। ईरान ने अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। अमरीकी फौज मुहिम अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भारत की सरकर्दा खातून बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय के तौर पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन की तारीख में ये कामयाबी एक अहम संगे मील है। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने सिंधु की इस हुसूलियाबी को तारीखी करार दिया है और कहा है कि इस कामयाबी से कौम को फख्र हासिल हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने पर PV सिंधु को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस कामयाबी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक तारीख साज कारनामा करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि सिंधु ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अजम और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और उनकी ये कामयाबी निहायत अहम है। फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज रात अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा जिसमें दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में अर्जेंटीना का शुमार कामयाब तरीन टीमों में होता है जो 3 मरतबा आलमी खिताब जीत चुका है। लियोनेल मेसी की क्यादत में अर्जेंटीना की टीम ब्राजील के बाद पहली ऐसी टीम बनने की कोशिश करेगी जिसने मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है। ब्राजील ने 1958 और 1962 में लगातार 2 मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा आलमी खिताब जीतने के अजम के साथ मैदान में उतरेगी। मर्दों की क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में खेले जाने वाले 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के तीसरे फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 20 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के 109 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 3 विकेट पर 387 रन

0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा। एक बार फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल, जो कल से शुरू हो रहा है, कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुशुसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज उड़ीसा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जानें चली गईं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान की पासदाराने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: आकाशवाणी है, लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
3: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम इस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जन विश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश हो।

0: सरकार की तरफ से, और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद मिलकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे, और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में उनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है
1: जी
0: कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल के कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, इन्होंने नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।

0: सीपीआईएम से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मॉनसून सत्र में उठाने वाली है।
1: मतलब एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गाँव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
0: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
2: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई, सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
0: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि, आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है, और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
3: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया, नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की, और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें।

0: उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग है थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे के चले गए वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे, आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं। उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट जाए, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है, और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी रही है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं, और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ चाहिए जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है, ये और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की, 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिक, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उस पे इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे, और आप प्रतिशोध डालने ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा, और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुधाने का महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया, ये शर्तें जोड़ने की कहाँ जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के

0: आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली बात ही जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
3: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12-13 साल में देखे, हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है, जैसे या उस डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखें जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की

0: बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला है। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, ईट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है, जफर साहब अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है।

0: जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनको जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: रात्रि के 10 बज चुके हैं, थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
5: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर हेल्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Tiruchi Sri S. Ganesan. After completing music senior certificate course from Thrissur Sri Rama Varma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
4: Aaj ke karyakram mein Srimati Balamani Ishwar ke saath sangat kar rahe hain violin par Srimati Parur M.K. Anant Lakshmi, mridangam par Shri B. Ganapati Raman, tata kanjira par Shri Udupi S. Srikant. Srimati Balamani Ishwar अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव भारमा से कर रही है। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
5: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकम्पनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। द कॉन्सर्ट बिगिन्स विद Brova Barama, composed by Saint Tyagaraja, in Rag Bahudari, set to Adi Tal.

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

0: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी इज अकॉम्पनीड बाय परूर श्रीमती एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। लिसन नाउ टू पक्कल निलपटी कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा इन राग करहर प्रिया सेट टू मिश्र चापुताल।

0: रचना के अंत में आपने सुना तनी आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में। रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: दैट वॉज अ तनी आवर्तनम परफॉर्म बाय श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Srimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandadu, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi.

रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा

0: last came in. Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup as defending champions Argentina take on Spain in New Jersey tonight. The match kicks off 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी कल प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:55 पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।